0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई दी।

हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटी डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा

0: एक कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान

0: होने की आशंका है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को PM ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और EV कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्य के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, Musically Yours.
1: म्यूजिकली योर्स पर आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। और संडे मॉर्निंग कैसी चल रही है आप लोगों की? जी हाँ, मुझे पता है कि छुट्टी वाला दिन है, तो छुट्टी वाले दिन के लिए थोड़ी थोड़ी स्लो ही होती है भाई। हफ्ते भर सब लोग काम भी ज़्यादा करते हैं, और स्पेशली मैं तो खैर पूरे हफ्ते ही आप लोगों के साथ होता हूँ। वेल मस्त मुंबई में बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और आज है आपका फेवरेट सेगमेंट जो मस्त मुंबई में रहता है, आज चल के तुझे, यानी कि संडे के दिन हम आप लोगों को कहीं लेकर जाते हैं जो ट्रेवलिंग बेस्ड, पिलग्रिमेज बेस्ड और आपकी यात्राओं के सफर के ऊपर बेस्ड होता है। तो आज एक और ऐसे ही एक शहर को लेकर आया हूं आप लोगों के पास। पहले पेश करता हूं ये गीत और उसके बाद बताता हूं उस शहर के बारे में जो वाकई में आपकी सोच से भी ज्यादा पुराना है।

नमस्कार, मैं हूं बनारस। हाँ, वही बनारस जिसे तुम कभी काशी कहते हो, कभी वाराणसी और कभी प्यार से बनारस। मैं कोई साधारण शहर नहीं हूं, मैं एक एहसास हूं। एक ऐसा एहसास जिसे समझने के लिए शायद तुम्हें मेरे बारे में पढ़ना नहीं, मेरी गलियों में चलना पड़ेगा। तो आओ, आज मेरे साथ चलो। आ चल के तुझे पुण्य प्रसून पुरातन काशी। कहते ना कि भाई, जो पुराणों से भी प्राचीन हो और बहुत ही ज्यादा प्राचीन और एकदम प्राचीन हो, प्राचीन से भी ज्यादा प्राचीन है, तो वो है काशी। उस काशी की आज हम लोग बात करेंगे और आज आपको वहां की गली और घाटों को घुमाता हूं और अब पेश करता हूं काशी हो और बस भगवान शिव की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। काशी में बहुत सारी चीजें हैं देखने की, महसूस करने की, और अब पेश करता हूं मित्र वेदी की आवाज में नमो नमो।

तो आओ आज मेरे साथ चलो मेरी गलियों में, मेरे घाटों पर, मेरी गंगा के किनारे, और उस समय में जहां आज भी सदियां सांस लेती हैं। सुबह सुबह जब तुम मेरे घाटों पर आओगे ना, तो शायद तुम्हें लगेगा कि मैं अभी अभी जागा हूं, लेकिन सच बताऊं मैं रात में भी नहीं सोता। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल शिव के ध्यान की तरह, ध्यान ही ध्यान और इतना गहरा ध्यान कि ना ही सोए। मेरी गंगा बहती रहती है, मेरे मंदिरों की घंटियां बजती रहती हैं, मेरी गलियों में चाय चढ़ती रहती है, और किसी कोने में कोई शहनाई किसी पुराने राग को फिर से जगा देती है। मैं ऐसा शहर हूं जहां सुबह सिर्फ सूरज से नहीं होती, सुबह होती है मंत्रों से, घंटियों से, नावों की हल्की आवाज से, और गंगा के पानी पर पड़ती हुई सूरज की पहली किरण से।

जी हाँ, संडे का दिन है, 9 बज चुके हैं और आप लोग हैं मेरे साथ एफएम रेनबो पर अपने हमदराज आरजे अभिनव के साथ। बात कर रहा हूं मैं आचल के तुझे में इस प्यारे सेगमेंट में आपकी यात्रा के, आपकी पिलग्रिमेज के, आपकी खूबसूरत इस सफर से, एक प्यारी सी सिटी की बात, एक प्यारे से शहर की बात, और वो है बनारस काशी। नाव की हल्की आवाज और गंगा के किनारे पानी पर पड़ती सूरज की पहली किरण। तुमने मेरा नाम वाराणसी क्यों रखा, ये जानना चाहते हो? मेरे नाम की जो उत्पत्ति है या व्युत्पत्ति कहें तो वर्णा और अस्सी के नदियों से जोड़ी जाती है। गंगा के किनारे बसा हुआ मेरा शहर दोनों नदियों के बीच अपनी पहचान बनाता आया है, लेकिन सबसे पुराना नाम जो है मेरा वो है काशी। काशी संस्कृत के काश शब्द से जुड़ा हुआ नाम, जिसका

सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की नगरी, और मेरी मान्यता तो ये भी कहती है कि मैं खुद स्वयं भगवान शिव की नगरी हूं। मेरी धरती पर शिव हैं, मेरी सांसों में गंगा है और मेरी स्मृतियों में हजारों वर्ष की कहानी। इतिहास की बात करूं तो मैं दुनिया के सबसे पुराने निरंतर बसे हुए शहरों में से एक हूं। मेरे बारे में प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में काशी एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में जानी जाती थी, और जब दुनिया इतिहास लिखना सीख रही थी तब मेरे घाटों पर जीवन अपनी कहानी लिख रहा था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मेरे पास ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में माना जाता है। तो सोचो, मेरी धरती ने बुद्ध को बोलते सुना है, शंकराचार्य को देखा है, कबीर की वाणी सुनी है, रैदास के शब्दों को महसूस किया है, तुलसीदास की भक्ति को देखा है, और संगीत की ऐसी परंपराएं पाली हैं जिनकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। आता हूं दोबारा इस गीत के बाद। नए जमाने का जय जय शंकर भी आप लोगों के सामने।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

बनारसी साड़ी है, बनारसी पान की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बात बनारस की है। लेकर आता हूँ वाली बात अभी और उन गीतों के साथ भी, लेकिन बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ। आइए कुछ और बातें करते हैं, लेकर चलता हूँ फिर से बनारस मेरे घाटों।

आओगे ना तो एक बात समझ जाओगे कि मैं सिर्फ जिंदगी का शहर नहीं हूँ, मैं जिंदगी और मृत्यु दोनों को एक साथ स्वीकार करने वाला शहर हूँ। दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती में रोशनी आसमान तक जाती है और दूसरी ओर मणिकर्णिका घाट पर जीवन की अंतिम यात्रा चलती रहती है। मेरे लिए विरोधाभास नहीं है, यही तो मेरा दर्शन है। जहाँ जन्म भी है, मृत्यु भी है, उत्सव भी है, विरक्ति भी है, भक्ति भी है और सवाल भी। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जिंदगी को सिर्फ पकड़कर नहीं रखना चाहिए, कभी कभी उसे बह देने जाना भी चाहिए, ठीक वैसा ही जैसे गंगा बहती है। और हाँ, मेरी गलियों में रास्ता मत ढूंढना, मेरी गलियों को महसूस करना। कहीं इतनी पतली गली मिलेगी कि दो लोग मुश्किल से निकलें और उसी गली के अगले मोड़ पर तुम्हें कोई सैकड़ों साल पुराना मंदिर मिल जाएगा। कहीं पान की दुकान होगी, कहीं बनारसी साड़ी का करघा, कहीं चाय की भाप और कहीं कोई बुजुर्ग बिना किसी जल्दी के दुनिया को गुजरते हुए देख रहा होगा। यही मैं हूँ, थोड़ा उलझा हुआ, थोड़ा बेफिक्र, थोड़ा आध्यात्मिक और बहुत सारा बनारसी।

0: देखो, मेरी आवाज सुननी है तो शहनाई को सुनो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की कल्पना करो। एक ऐसा संगीत जिसमें मेरे घाटों की सुबह भी है और मेरी शाम की आरती भी। मेरे यहाँ संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, संगीत मेरी संस्कृति की सांस रहा है। ध्रुपद से लेकर ठुमरी तक, लोक परंपराओं से लेकर शास्त्रीय संगीत तक, मैंने कलाकारों को जन्म दिया और कलाकारों ने मुझे। और अगर तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ अतीत में जीता हूँ, तो थोड़ा सा ठहरो। मेरे पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ज्ञान की बड़ी परंपरा, संस्कृति की शिक्षा की परंपरा, शास्त्र और विज्ञान, कला और साहित्य, संगीत और दर्शन, मैंने सदियों से सवाल पूछे हैं। और शायद यही वजह है कि मेरे यहाँ हर गली के पास एक कहानी है, हर घाट के पास एक स्मृति है और हर सुबह के पास एक नया अर्थ। पान की बात
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है मणिलाल मूलाशंकर पंड्या। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और दमोह से खुशी हुर्रा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

कभी कभी शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, वो समय की स्मृति बन जाते हैं, वो पीढ़ियों के बीच संवाद का सेतु बनते हैं, संस्कृति की चेतना को अक्षुण्ण रखते हैं और मनुष्य के भीतर सोई हुई संवेदना को जगाते हैं। एक ऐसे ही महान शब्द साधक थे आचार्य शिवपूजन सहाय। उन्होंने कलम को यश पाने का साधन नहीं, समाज का ऋण चुकाने का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी में गांव की पगडंडियां बोलती हैं, किसानों की पीड़ा स्वर पाती है, मानवीय रिश्तों की ऊष्मा स्पंदित होती है और भारतीय जीवन दर्शन अपनी सरलता और संपूर्ण गरिमा के साथ आकार लेता है। उन्होंने भाषा को अलंकारों से नहीं, आत्मीयता से सजाया, शब्दों को वैभव से नहीं, संवेदना का सौंदर्य दिया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका स्थान एक युग प्रवर्तक, गद्यकार, संपादक और भाषा संस्कारक के रूप में अमर है। वो एक उच्च कोटि के उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक होने के साथ साथ प्रखर पत्रकार भी थे। उन्हें हिंदी गद्य का अनुपम शिल्पकार और भाषा का जादूगर कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए सन 1960 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त सन 1893 को बिहार के शाहबाद जिले के उनवास नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। बचपन में पिता से सुनी राम कथा और ग्रामीण जीवन ने उनके भीतर लोक संस्कृति और बोली भाषा के संस्कार बो दिए। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जहां उन्होंने कैथी लिपि, हिंदी और फारसी की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो औपचारिक उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके और बनारस की अदालत में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही आरा में हिंदी शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य आरंभ किया। देश की पराधीनता उन्हें भीतर ही भीतर कचोटती रहती। यूं भारत भूमि की आजादी का स्वप्न उनके भीतर जागने लगा।

इसी बीच साल आया सन 1921। महात्मा गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी की पुकार पर आचार्य शिव पूजन सहाय ने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा पत्रकारिता के माध्यम से इस लड़ाई में शामिल होने का निश्चय किया। इस तरह अब उनका जीवन पत्रकारिता और साहित्य को पूर्णतः समर्पित हो गया। वो केवल संपादक नहीं बल्कि संपादन संस्था के रूप में स्थापित हुए। सन 1921 में कलकत्ता से प्रकाशित मारवाड़ी सुधार नामक पत्रिका से उनकी संपादकीय यात्रा आरंभ हुई। सन 1923 में वो ऐतिहासिक मतवाला मंडल के सदस्य बने। कलकत्ता से निकलने वाले राष्ट्रीय पत्र मतवाला के संपादकीय मंडल में वो निराला जी के साथ शामिल थे। मतवाला के नामकरण और इसके जुझारू तेवर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव प्रसाद सेठ के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को तीखा स्वर दिया। लखनऊ से प्रकाशित माधुरी पत्रिका के संपादन विभाग से भी वो जुड़े और यहीं मुंशी प्रेमचंद के निकट सहयोगी बने। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की भाषा को तराशने और उसके संपादन का श्रेय शिव पूजन सहाय जी को ही जाता है। उन्होंने इसमें उर्दू प्रभावित वाक्य विन्यास का परिष्कार किया तथा देवनागरी मानकीकरण के साथ कथा गद्य को प्रवाह देने में योगदान दिया। सन 1926 से 1936 के बीच अपने काशी प्रवास के दौरान वो जयशंकर प्रसाद के मित्र मंडल में शामिल हुए और जागरण पत्रिका का संपादन किया। प्रसाद जी की कालजयी

दी। कामायनी की पांडुलिपि के संशोधन का ऐतिहासिक गौरव भी शिवपूजन सहाय जी को प्राप्त है। उन्होंने इसमें क्लिष्ट तत्सम भाषा की व्याकरणगत संगति, छंद सुधार और मुद्रण योग्य पांडुलिपि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने निराला जी की अनेक बिखरी हुई पांडुलिपियों के संपादन और मतवाला के लिए अनेक अनगढ़ गद्य को निखारने का कार्य किया। इस तरह उन्होंने हिंदी के तीन युग पुरुषों की कृतियों को संवारा, लेकिन स्वयं सदैव नेपथ्य में रहे। लेकिन सच यही है कि यदि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इतना प्रांजल हुआ, यदि निराला जी का काव्य शिल्प मतवाला के माध्यम से स्थापित हुआ और यदि कामायनी जैसी अमर कृति इस रूप में सामने आई, तो इसमें शिव पूजन सहाय जी की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रमण ने श्रद्धा के फूल में लिखा है, आचार्य शिव जी ने लिखा कम, लेकिन कामायनी की पांडुलिपि में संशोधन करने का गौरव उन्हें ही प्राप्त है। उनकी संपादन कला के विषय में एक बार द्विवेदी जी ने कहा था, संपादक के रूप में शिवपूजन सहाय एक माली थे, उसी तरह नए पौधों को रोपते थे। उनकी बेतरतीब झाड़ियों को काट छांट कर सुरम्य बना देते। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाएं केवल सामयिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्य की स्थायी दृष्टि से भी ग्रंथों की तरह महत्वपूर्ण हैं। इस तरह हिंदी साहित्य की सेवा के क्षेत्र में शिव पूजन सहाय नेपथ्य के महानायक के रूप में स्थापित होते हैं।

सन 1934 से 1939 तक दरभंगा के लहरिया सराय स्थित पुस्तक भंडार से जुड़कर शिव पूजन सहाय ने संपादन का कार्य किया तथा बाल पत्रिका बालक को नई ऊंचाइयां प्रदान की। सन 1939 से 1949 तक वो राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक रहे। यहाँ वो 10 साल तक हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। इस दौरान उनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। उनके लिखे आरंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन जी का मानना था कि साहित्य केवल बुद्धि का विलास नहीं बल्कि आत्मा की पुकार तथा समाज का दर्पण है। उन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। वो ठेठ देहाती मुहावरों, कहावतों और आंचलिक शब्दों का प्रयोग इतनी चतुराई से करते थे कि भाषा में अलौकिक तरलता आ जाती थी। उनकी लेखन शैली में दृश्य रचने की अद्भुत क्षमता है। वो शब्दों के माध्यम से ऐसा जीवंत चित्र खींचते हैं कि पाठक स्वयं को उस परिवेश का हिस्सा महसूस करने लगता है। आचार्य शिव पूजन सहाय के लेखन की एक विशेषता ये भी है कि वो गंभीर से गंभीर विषयों में भी सूक्ष्म हास्य और व्यंग्य का पुट मिलाकर भाषा को बोझिल होने से बचा लेते हैं। वो भाषा के प्रति अत्यंत सतर्क थे। उनका गद्य न तो संस्कृत की जटिलता से दबा हुआ था और न ही उर्दू फारसी का अतिशय प्रभाव उसमें दिखाई देता है। ये हिंदी का अत्यंत परिमार्जित और प्रांजल रूप था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, विभूति, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृतिशेष, हिंदी भाषा और साहित्य आदि। सन 1926 में प्रकाशित उनकी कृति देहाती दुनिया को हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसमें गांव केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि स्वयं जीवंत पात्र सा सामने आता है। खेत, मेले, लोकगीत, रिश्तों की ऊष्मा और बाल मन की सहजता, सब कुछ इतनी आत्मीयता से चित्रित है कि पाठक स्वयं उस गांव का निवासी बन जाता है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं, रहस्य ये है कि जब हम लोग रामायण पाठ की कथा सुनते सुनते ऊंघने लगते तब बाबूजी मुस्कुराकर पोथी बंद कर देते और हमें दुलार कर सुला देते। माता के आंचल में छिपकर सोने में जो सुख और सुरक्षा मिलती थी वो संसार के किसी राज सिंहासन पर नहीं थी। ये केवल एक स्मृति नहीं भारतीय ग्रामीण संस्कृति का एक भावचित्र है। सहाय जी ने संस्मरणों की विधा में भी अमूल्य योगदान दिया। उनका प्रसिद्ध संस्मरण संग्रह वे दिन वे लोग केवल स्मृतियों का संकलन नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का जीवंत दस्तावेज है। इसमें उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का चित्रण अत्यंत आत्मीयता से किया है। निराला जी के विषय में वो लिखते हैं, निराला जी के पास जब जेब में पैसे होते थे तो वे किसी भूखे नंगे को अपनी कुर्ती तक उतार कर दे देते थे और जब शाम को उनके पास दिया जलाने के लिए माचिस भी नहीं बचती थी तब वे अपनी कालजयी कविताओं की पंक्तियां गुनगुनाते हुए अंधेरे कमरे में बैठकर हंसते थे। ऐसे थे हमारे निराला। इस छोटे से संस्मरण में केवल निराला जी का व्यक्तित्व ही नहीं शिव पूजन जी की संवेदनशील दृष्टि भी झलकती है। देश की आजादी के बाद सन 1950 से 1959 तक वो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक पत्र के संपादक भी रहे। पटना विश्वविद्यालय

उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। आजीवन साहित्य सेवा करते हुए 21 जनवरी सन 1963 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान साहित्य सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

नमस्कार और अब वक्त हो चला है आज के हिंदी समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। नवी मुंबई में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि नांदेड़ में स्थित तख्त श्री हजूर साहिब महाराष्ट्र और पंजाब के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रमाण है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। उसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चलिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में असम की अश्मिता ने चीन की हान चियानशी को 3 गेमों के मुकाबले में 14-21, 21-14, 21-14 से हराया।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: पर आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव। हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल। और अब वक्त हो चला है नमस्ते भारत सेगमेंट का, और इस सेगमेंट में एक और छोटे से सेगमेंट का, यानी कि शो में एक छोटे सेगमेंट का, वो है मेरा दिल मेरी बातें। और आज का हम शो ट्रिब्यूट करेंगे श्री तीजन भाई जी को। कभी कभी कोई इंसान चला जाता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं जाती, कुछ

आवाज़ें कानों से सुनी जाती हैं और कुछ सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज ऐसी एक आवाज़ की बात, एक ऐसी आवाज़ जिसने छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उठकर महाभारत की गाथाओं को दुनिया के मंच तक पहुंचाया। नाम था तीजन बाई। और 8 अगस्त को यानी कल के दिन ही उनका जन्मदिन आता है। अगर वो आज हमारे बीच होती तो आज उनका 70वां जन्मदिन होता। लेकिन इस बार 8 अगस्त सिर्फ उनका जन्मदिन नहीं है, ये उस कलाकार को याद करने का दिन भी रहा जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोक कला को समर्पित कर दी। तीजन बाई का जन्म 1956 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में हुआ था और बचपन में उन्होंने अपने नाना ब्रजलाल पारधी से महाभारत की गाथाएं सुनी। आगे क्या हुआ बताता हूं, पेश करता हूं कुछ और गीत।

यही आवाज आगे चलकर बनी थी पंडवानी। उन्होंने कहानियां सुनी, याद की और फिर उस कहानी को अपनी आवाज दे दी। आगे चलकर आवाज बनी है पंडवानी। पंडवानी यानी पांडवों की कथा। छत्तीसगढ़ की इस लोक गायन परंपरा में महाभारत की कहानियां सिर्फ गाई नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। कलाकार कहानी सुनाता भी है और गाता भी है, और उसी मंच पर भीम बन जाता है, अर्जुन बन जाता है, द्रौपदी बन जाता है। और तीजन भाई ने इस कला को एक अलग ही ऊंचाई दी, और मैं भी उन एक्चुअली सौभाग्यशाली लोगों में से एक रहा हूँ जिन्होंने इसको, यानी कि उनकी इस कला को लाइव देखा है लखनऊ में जब वो आई थी परफॉर्म करने के लिए। उनकी कहानी सिर्फ कला की कहानी नहीं है, तीजन भाई ने इस कला को अलग ऊंचाई दी है। और इस लड़की की कहानी है जिसने उस समय मंच पर खड़े होकर गाने की हिम्मत की जब पंडवानी की काल्पनिक शैली में या काल्पनिक शैली में महिलाओं को इस तरह का प्रदर्शन करना आम नहीं था। बात करेंगे उसके बारे में। और अब पेश करता हूँ आज एक और मूवी का गाना जो कि है इमली का बूटा। और आज क्योंकि सौदागर फिल्म को भी कुछ साल पूरे हो रहे हैं और यहाँ तक कि उसको 30 साल से ऊपर पूरे हो रहे हैं, इसलिए सौदागर फिल्म का गाना। और विवेक मिश्रा जी का भी बर्थडे है आज, इस मूवी को रिलीज हुई बल्कि 35 साल पूरे हो गए हैं। और इस मूवी में जिन्होंने काम किया था विवेक मिश्रा जी, उन्होंने भी जिन्होंने काम किया था, उनका जन्मदिन भी आज है। तो आज इस मौके पर मैं पेश करता हूँ अपनी तरफ से ये गीत।

0: सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से पंडवानी प्रस्तुत की और पहली प्रस्तुति की कमाई थी सिर्फ 10 रुपये। 10 रुपये, लेकिन शायद उस दिन उन 10 रुपयों से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ उन्हें मिली थी, अपने हुनर पर भरोसा। और फिर जिंदगी ने उन्हें आसान रास्ता नहीं दिया, उन्हें विरोध मिला, समाज का विरोध मिला, अपने ही लोगों का विरोध मिला, लेकिन तीजन बाई रुकी नहीं। उन्होंने अपनी आवाज़ को दबाया नहीं, बल्कि उसी आवाज़ को इतना बुलंद किया कि एक दिन दुनिया ने उसे सुना। उनकी आवाज़ में जब महाभारत का युद्ध उतरता था तो लगता था जैसे कुरुक्षेत्र सामने खड़ा है। जब भीम की गदा उठती थी तो हाथ में मौजूद तंबूरा ही गदा बन जाता था। जब अर्जुन आता था तो वही तंबूरा धनुष बन जाता था। और जब द्रौपदी की कथा आती थी, वही कलाकार एक पल में चरित्र बदल लेती थी। यही तीजन बाई की कला थी, सिर्फ गायन नहीं, कहानी को शरीर, आवाज और आत्मा देना। उनकी कला की गूंज गांव से निकलकर देश और फिर दुनिया तक पहुंची। इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की, ट्यूनिशिया, मॉरिशस जैसे कई देशों में उन्होंने भारत की लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व किया, उसको रिप्रेजेंट किया। उन्होंने महाभारत की कथाओं को लेकर बनी श्याम बेनेगल की चर्चित दूरदर्शन की एक सीरीज भारत एक खोज में भी अपनी कला का उन्होंने प्रदर्शन किया।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

ज्यादातर आप लोगों के गीत में बॉलीवुड की फोक सॉन्ग से रखने वाला हूं, वो भी इसलिए क्योंकि आज हम एक लोक कलाकार यानी कि फोक सिंगर के बारे में बात कर रहे हैं, फोक आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पद्मश्री संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, पद्म भूषण फुक ओ का पुरस्कार और 2019 में पद्म विभूषण। लेकिन मुझे लगता है कि तीजन बाई जी की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं था, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी अचीवमेंट थी कि ऐसी लोक कला जो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी उसको पहुंचाना, जो शायद किसी किताब के पन्ने में नहीं बल्कि लोगों की आवाज़ों में जिंदा रहती है। और शायद यही वजह है कि आज जब तीजन बाई हमारे बीच नहीं है उनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि लोक कला की एक खूबसूरत बात होती है, कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी आवाज़ अगली आवाज़ में जन्म ले लेती है।

0: कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी आवाज अगली आवाज में जन्म ले लेती है। आज उनकी जयंती पर यानी कि उनको याद करते हुए हम लोग बस यही कह रहे हैं कि तीजन भाई को मैं सिर्फ एक महान कलाकार के रूप में याद नहीं करना चाहता, मैं उस औरत के रूप में याद करना चाहता हूँ जिसने कहा नहीं, लेकिन अपने जीवन को साबित किया, उस जीवन से साबित कर दिया कि अगर आपकी आवाज़ सच्ची है तो दुनिया को एक ना एक दिन उसे सुनना ही पड़ेगा। तीजन भाई, आपने महाभारत की कहानियाँ सुनाते सुनाते हमें शायद अपनी ही कहानी सुना दी।
1: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग।

आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ मैं यहाँ पर आपका हमराज आरजमन 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो मुंबई पर, और जो कि शो है वो तो आपको पता ही चल रहा है, नमस्ते भारत सेगमेंट है मेरा दिल मेरी बात है। बात कर रहे हैं हम लोग श्री तीजन भाई जी की, और अब मैं एक ही बात कहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे लोग बने हुए हैं, उन्होंने ही मुझसे कहा कि फरमाइश की है कि हमारे बारे में ही बताएं। तो प्रकाश शिंदे, अजय सांखर, विजेंद्र घाटोल, और मेरे पास कॉल भी आया था जगन्नाथ जी का, बाबा दादर से श्रेय राहो, थ्रो शगनपुरिया, सभी लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, पंकज माहौड़ हैं, इन सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं। सभी लोगों के लिए गीत पेश करता हूं, और क्योंकि मैंने कहा था कि फोक सॉन्ग्स चल रहे हैं, लोकगीत हैं, और जो कि बॉलीवुड की फिल्म्स में भी यूज़ किए गए हैं अलग अलग, जैसे कि अभी मैंने ये पेश किया तो लेकर आऊँगा। बात कर रहे थे हम लोग तीजन भाई जी की, उनके लिए भी कुछ और भी बातें मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने हमें महाभारत की कहानियाँ सुनाते सुनाते अपनी ही शायद कहानी सुना दी, संघर्ष की कहानी, हिम्मत की कहानी, और उस आवाज़ की कहानी जिसे कोई रोक नहीं पाया। आज आपकी आवाज़ हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपकी पंडवानी की गूंज अभी बाकी है, बहुत बाकी है। पेश करता हूँ अब नगाड़ा संघ ढोल, जगन्नाथ जी ने मुझे कॉल किया था और ये गीत पेश करता हूँ।

पेश करता हूं और कुछ और गीत आप लोगों के सामने अब आएगा गेंदा फूल और उसके बाद कुछ और गीत।

इसी उम्मीद के साथ कि आज मेरा दिल मेरी बातों में एक दिल से निकली बात, कुछ कलाकार मरते नहीं और वो अपनी कला में बदल जाते हैं। तीजन भाई भी अब एक आवाज नहीं, एक विरासत है। तथ्य के तौर पर अगर मैं बता दूं, पंडवानी में महाभारत की कथाओं का गायन, अभिनय और तंबूरा एक तरह का इस्तेमाल होता है, और तीजन भाई जी ने पुरुष प्रधान कापलिक शैली में खड़े होकर प्रस्तुति देकर एक बड़ी लकीर खींची थी। पेश करता हूं बैक टू बैक कुछ और गीत।

नमस्कार। और वक्त हो चला है आज के समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल मुंबई में नाविकों की सुरक्षा और कल्याण पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री सोनोवाल सरकार के संकल्प को दोहराया कि हर नाविक सुरक्षित रहे और उसे सम्मान और मदद दी जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दान के गबन के आरोपों की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने मंदिर के पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड की जाँच करने का निर्देश दिया है। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एफ फेरेनेका का और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वोंग ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे बुनकर भाई बहनों का उत्साह वर्धन किया है और हथकरघा जो है उसका महत्व उन्होंने बताया है। साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि समर्पित किया गया है बुनकर भाई बहनों को, उसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूँ आज स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मन की बात का वो हिस्सा जिसमें हमारे बुनकर भाई बहनों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। आज स्टूडियो में हमें समय दिया है हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और विकास आयुक्त हैं हथकरघा से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
3: नमस्कार।
2: आइए अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन की बात का एक अंश।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा

0: वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: तो साथियों, आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उल्लेख करते हुए इसके संदर्भ में बुनकर भाई बहनों के विशेष हितों का भी एक तरह से उल्लेख किया है। तो इस बारे में हम और जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं उस धागे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता बल्कि भारत की विरासत, संस्कृति और लाखों परिवारों के सपनों को बुनता है। सामाजिक ताने बाने का हिस्सा वो धागा जो हमारी विरासत भी है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। स्वदेशी आंदोलन से लेकर वैश्विक पहचान तक ये धागा भारत में और भारतीयता भर देता है। महात्मा गांधी ने चरखा चलाते हुए जन जन को जोड़ा और साथ ही स्वदेशी का महत्व बताया। स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा और उसके बाद एक से एक बढ़कर उपलब्धि जो हमें हासिल हुई है और आज हम कहते हैं कि भारतीय वस्त्र की पहचान वैश्विक पहचान है, तो ये भी हमने हासिल की है अपने बुनकर भाई बहनों के परिश्रम से ही। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर एम बीना, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी मैडम कि हमारा जो विभाग है और हमारा जो मंत्रालय है वो किस तरह से हमारे जो बुनकर भाई बहन हैं उनके लिए कार्य करता है।
2: ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करने वाला विभाग है एंड उसका पूर्णतः लक्ष्य ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। तो उसमें हमें हैंडलूम को भी बढ़ावा देना है और हैंडलूम के जो वीवर्स है उनकी भी मदद करना है, ये हमारा पूर्णतः लक्ष्य है
1: जी।
2: तो इसमें हमारे दो प्रधान कार्यक्रम है, एक तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें हम देते हैं एंड टू एंड सपोर्ट वीवर्स को, स्किलिंग देते हैं उनको, मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं उनको, करखे नए करखे देते हैं उनको, वर्कशीट्स दिया जाता है, तो उस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दूसरा, हम तभी बुनाई शुरू करेंगे जब हमारे पास धागा होगा
1: जी।
2: तो सबसे एक बड़ा चैलेंज है बुनकर को कि धागा रॉ मटेरियल को आपूर्तिकरण के लिए, तो इसके लिए हमारा दूसरा स्कीम है रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम जिसके तहत हम देते हैं 15% प्राइस सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो ये तो हमारे बड़े कार्यक्रम है जो हर स्टेट में चलाया जाता है, हर क्लस्टर में चलाया जाता है, तो इसी से हमारे वीवर्स को बहुत मदद मिलती है
1: जी। जब हम बात करते हैं मैम वीवर्स की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर बुनकर अपने पूर्वजों से सीखकर ये कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कई बार, तो उन्हें पता नहीं चलता कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीधे आपसे सुने कि ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा सकते हैं।
2: तो हमारे जो भी स्कीम्स है वो अंततः वीवर का ही उसमें बेनिफिट होता है
1: जी।
2: जो वीवर ये नहीं जानते, काफी वीवर्स जानते हैं लेकिन जो वीवर अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे मुझे ये बोलना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, देखो एक वीवर को नॉर्मली क्या चाहिए, उनको तो पहले धागा चाहिए, तो धागे के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के तहत दो तरह की सब्सिडी दिया जाता है। तो एक तो है आपका प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी उन धागों को दिया जाता है जो नेचुरल फाइबर्स है
1: जी।
2: जैसे कि कपास हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स है हम उनमें 15% प्राइस सब्सिडी देते हैं। जैसे कि अगर आप एक्रिलिक पे काम कर रहे हैं, आप सिंथेटिक पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे लेकिन उसमें हम बस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं, माने आपको धागा मिल जाएगा मिल गेट प्राइस पे। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रधान कार्यक्रम
1: जी।
2: तो दूसरा, आपका जो हथकरघा है अगर वो पुराना हो गया या फिर अगर आप बहुत आउटडेटेड लूम पे काम कर रहे हैं तो आपको नया हथकरघा की जरूरत है तो वो हम आपको दे सकते हैं हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा, बहुत सारे घरों में अब ये देखा जा रहा है कि घर नए बन रहे हैं तो घर में टीवी आ गया, सोफा आ गया, सब आ गया, अब हथकरघा के लिए जगह नहीं है
1: जी।
2: तो हम एक वर्कशेट का भी एक कार्यक्रम है जहां हम 1,20,000 तक वर्कशेट में मदद देते हैं जिसका 90% सरकार की ओर से जाता है और

0: 10% वीवर को बेयर करना पड़ता है। तीसरा है, हमारे बुनकर काम करते हैं तो उनको लाइट की जरूरत है
1: जी,
0: तो इसके लिए सोलार लाइटिंग का भी एक कार्यक्रम है जहां हम अप टू 15,000 सोलार लाइट के लिए भी देते हैं। तो ये अपने घरों में बैठकर ये तीन आपको मिल जाएंगे
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा हमें डिजाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है
1: जी,
0: तो इसके भी कार्यक्रम है। अब मार्केटिंग में हमारे बहुत सारे मेले लगते हैं, आपने सुना होगा गांधी बुनकर मेला जो जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है, और नेशनल हैंडलूम एक्सपो अपने दिल्ली खाड में भी देखा होगा, हमारे बुनकर भाई लोग आते हैं। तो इन सब के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए एक तो अपना राज्य सरकार को भी हम पैसे देते हैं इसका आसूत्रण करने के लिए, तो इधर राज्य सरकार द्वारा वो अप्लाई करें या फिर हमारा एक पोर्टल होता है दिल्ली हाट वगैरह, और जो भी नेशनल लेवल पे जो मेले होते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए दे हैव टू अप्लाई थ्रू दी नेशनल पोर्टल। ये हो गया मार्केटिंग। नाउ अब ये है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसमें देखो आजकल ना बहुत सारे फेक हैंडलूम भी चलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक बुनकर अपने प्रोडक्ट पे हैंडलूम मार्क नहीं लगाएगा तो हैंडलूम मार्क लगाने से जनता ये जान जाएगी कि ये ऑथेंटिक है
1: जी।
0: तो हैंडलूम मार्क के लिए भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, हमारे लिए टेक्सटाइल कमिटी हैंडलूम ब्रांड का वो कार्यक्रम चलाती है। एंड कुछ ऐसे भी वीवर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं
1: जी,
0: तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कीम। तो वहाँ हमारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इनका चयन होता है और उनको बाहर भेजा जाता है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा अवार्ड्स
1: जी।
0: एक्चुअली ये जो 7 अगस्त है सारे वीवर्स इसको मनाते हैं क्योंकि उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं उस
1: जी।
0: हमारे दो अवार्ड्स है, एक तो संत कबीर अवार्ड और दूसरा है नेशनल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड का कार्यक्रम जो बहुत हुनरशाली वीवर्स है उनके सपोर्ट के लिए ये अवार्ड वाला कार्यक्रम है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वेलफेयर ऑफ द वीवर्स
1: जी।
0: अब वेलफेयर में भी हमारे दो तीन हिस्से है, हमारा एक अम्ब्रेला स्कीम है और हम ये कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड वीवर को मदद मिले। अब वेलफेयर में एक तो है हम इंश्योरेंस में हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो दो प्रधान हमारे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
1: जी।
0: तो इन दोनों में हम जो जो वीवर को प्रीमियम देना होता है उसका एक इन सुरक्षा बीमा योजना हम पूरा केंद्र सरकार देता है, एंड इन जीवन ज्योति बीमा योजना इट इज अ शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट
1: जी।
0: तो ये एक और है। दूसरा, अगर आप अवार्डी वीवर है और अगर आपके पास वो इनकम कम है तो आपको प्रति मास 8,000 रुपीस का असिस्टेंस मिलता है ओवर 60 इयर्स
1: जी।
0: तीसरा है हमारा स्कॉलरशिप, अगर एक बुनकर के बेटे को टेक्सटाइल में पढ़ाई करनी है चाहे वो डिग्री लेवल पर हो, डिप्लोमा हो या फिर हायर स्टडीज हो, तो वी सपोर्ट अप टू 2 लाख पर ईयर फॉर अ वीवर स्टूडेंट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर वीवर। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर कार्यक्रम। और लास्ट में एक और कार्यक्रम है हमारा मुद्रा स्कीम। तो वीवर्स मुद्रा स्कीम में हम देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग मार्जिन मनी, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग इंटरेस्ट सबवेंशन, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग क्रेडिट गारंटी। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से स्कीम्स है, अगर बुनकर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है हमारे हर राज्य में देयर इज अ बुनकर सेवा केंद्र वीवर सर्विस सेंटर, वहां पर उनको ज्यादा जानकारी मिल सके
1: जी। यानी एक बुनकर के जीवन में जितने पहलू हो सकते हैं सभी इन योजनाओं के माध्यम से आपने कवर करने की कोशिश की है और हर जगह कुछ ना कुछ मदद उपलब्ध करवाई जा रही है
0: जी।
1: ये रोचक जानकारी हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी थी और बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं यहाँ आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी ताकि हम श्रोताओं को सुनवा सकें।
0: मेरी मातृभाषा मलयालम है
1: जी,
0: लेकिन हिंदी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी लड़की थी तब से ये विविध भारती में जो भी गाने आते हैं तो एक्चुअली हिंदी जानने से पहले हिंदी के गाने, मैं सुनती हूँ
1: जी।
0: और आज के दिन आई थिंक मैं ये बोलूँ कि मोह मोह के धागे आज के सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है
1: सच में।
0: आई विल रेकमेंड दैट।
1: और इससे हम ये भी समझ सकते हैं मैम कि जो विभाग आप संभाल रही हैं उससे आपका कितना मोह है ये धागे लोगों के कल्याण के धागे

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले उन धागों की जो हथकरघा से हम तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है हथकरघा दिवस का, बुनकर भाई बहन जो है उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हम जान रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज की मेहमान इस कार्यक्रम में है डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम में। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब किसी भी चीज को प्रचलित करने की बात करते हैं तो भारत में हम युवाओं को जरूर अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि व्यवहार में वो चीजें उन्हीं के माध्यम से प्रसार पाती हैं। ऐसे में क्या इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो कि शैक्षणिक स्तर पर हथकरघा से या बुनकरों से जोड़ रही हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को?
1: ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देखो, हम हथकरघा हमारी विरासत है, हैंडलूम में से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था एक जमाने में
0: जी,
1: लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लुप्त हो गया तो ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो ये नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेके चले। तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं कि उसको पॉपुलराइज करने के लिए, एक तो हमने अपने ओर से कुछ शिक्षा संस्थान हमने स्टार्ट किए हैं, दीज आर द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजीज है और स्टेट गवर्नमेंट और 5 IHDs चलाते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वो हैंडलूम पे और टेक्सटाइल पे बहुत अच्छे से, डिप्लोमा भी चलता है, डिग्री भी का भी कोर्स है। तो ये एक ओर से हम ये कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो बुनकर सेवा केंद्र है तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि आसपास जो भी जनरल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ के बच्चों को जाके वो क्राफ्ट डेमोंस्ट्रेट करते हैं ताकि वो देख सके। को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कभी हथकरघा को देखा ही नहीं है, कैसे चलता है वो उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लेता है कि आज का जो जमाना है वो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी के ओर चल रहा है। एंड आज के जेन ज़ी एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस हैं, तो ये चाहते हैं कि देखो हमारे जमाने में किसी का पहना हुआ हम पहने की वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज ये ऐसा जमाना आ गया कि जेन ज़ी थिंकिंग ऑफ रीयूजिंग कंजर्वेशन, तो बहुत उनकी सोच में क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं। द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू द यूथ इस हैंडलूम में जो बनता है इट इज कार्बन न्यूट्रल, बिकॉज वीविंग में तो हम पावर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इट इज वेरी सस्टेनेबल, इट इंटेग्रेट सर्कुलरिटी। तो ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने यूथ को। खासकर हमारा एक प्रोग्राम भी ऐसा ही है, वीव द फ्यूचर
0: जी।
1: तो वीव द फ्यूचर में हम जो अपसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग में जो ब्रांड्स हैं जो हैंडलूम में काम करते हैं हम उनको मिला के दिल्ली हाट में, कभी क्राफ्ट म्यूजियम में, ताकि ये लगातार ये कॉन्वर्सेशन चलता रहे कि हैंडलूम इज इंटेग्रल टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया था सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ। बट दूसरा, जब तक हम साड़ी पर ही रहेंगे तो यूथ थोड़ा सा इसमें आने से कतराएंगे। तो इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो हमारे मेरे बुनकर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप साड़ियाँ बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन जमाना आ गया है कि आप अपना फैब्रिक को नए तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें जो आज के जेंसी पसंद करते हैं
0: जी,
1: तो उस तरह का भी आप काम करें। हमारे विभाग से डिजाइनर्स मौजूद है क्लस्टर लेवल पे, तो उनकी मदद लेके आप नया काम करने की भी कोशिश करें
0: जी।
1: और दूसरा, मैं बुनकर भाइयों के बच्चों से, जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीविंग नहीं भी आती हो लेकिन अपने पिताजी से, अपने माताजी से उनका जो हुनर है वो अंडरस्टैंड करें और उसको एटलीस्ट इंस्टा पेज तो वो बना सकते हैं
0: जी,
1: वो एटलीस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरी विनती है देश की युवा पीढ़ी से
0: जी। और कुछ समय पहले हमें एक छात्र से बात करने का अवसर मिला था, तो उन्होंने यही बताया कि NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जब फैशन शोज होते हैं, हम फैशनेबल कपड़े बना रहे होते हैं, तो उनके पैटर्न्स में भी हम इस तरह की वीविंग्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो बुनकर हैं उनके बच्चे भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
1: एक्चुअली आपने अच्छा, देखो देयर इज अ निफ्ट नाम की संस्था
0: जी,
1: तो निफ्ट के साथ हमने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम चलाते हैं। यह क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव। तो निफ्ट का हर एक बच्चा किसी न किसी आइदर हैंडलूम क्लस्टर या हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर में जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है एंड कुछ इनपुट्स वीवर को भी मिलता है, कुछ सीख बच्चे को भी मिलता है। एंड इस एसोसिएशन से हमने ये देखा कि एक बच्ची थी जो गुजरात में निफ्ट में पढ़ी थी, तो उसके बाद आफ्टर स्टडींग शी हैज स्टार्टेड एन ई-कॉमर्स पोर्टल फॉर ऑल द वीवर्स।

0: इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मैम इस गाने से पहले कि किस तरह से हम ट्रेंड पे ला सकते हैं अपने हैंडलूम को। आजकल जब युवा आपस में मिलते हैं या पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारे घर अतिथि आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट हम देते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगी हम हथकरघा से बुने हुए उत्पादों को कैसे शामिल कर सकते हैं?
1: इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
0: जी,
1: वे जब भी बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई लीडर्स इंडिया में आते हैं तो हमेशा उनका गिफ्ट जो है आइदर हैंडलूम का होता है या फिर हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो हम तो बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रधानमंत्री जी ही हैं।
0: जी,
1: तो वो एक्चुअली अच्छा उदाहरण है। जब भी हमें तोहफा देना होता है
0: जी,
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो दिवाली पर गिफ्टिंग करते हैं, कॉरपोरेट गिफ्टिंग करते हैं, तो अपना जो ट्रेडिशन है उसको प्रिंट करें। तो कुछ लोग करते भी हैं एंड कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सीएसआर के द्वारा कंपनीज खड़े किए हैं या फिर संस्थाएं खड़े किए हैं फॉर इंडियन हैंडलूम्स, चाहे वो आदियम हो चाहे तनेरा हो, तो ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। बट गिफ्टिंग के लिए दिवाली अब आने को है तो अभी से आप अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कीजिए, अपना कहने हम जो भी करें अपने आइडेंटिटी को याद करें। जब हम आइडेंटिटी को याद करेंगे, अपने रूट्स को याद करेंगे, तो हथकरघा तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है।
0: जी, ऐसे में मैम हमारे संस्थान का भी मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी, हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो भी अतिथि होते हैं उन्हें हम अंगवस्त्र जो है वो हैंडलूम से दें और सिर्फ पौधा भेंट करें, बाकी जो प्रतीक चिन्ह है उनके अतिरिक्त।
1: बहुत अच्छा,
0: तो ये भी हम आपस में ध्यान रख सकते हैं। और जेन ज़ी जो है, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत तेजी से आप चीजों का प्रसार करते हैं, तो ऐसे में जो अपनी पहचान है, हर राज्य के अपने अलग ऐसे धागे हैं जिन पर हमें गर्व है, हर राज्य का अलग पैटर्न है, तो हम उसके बारे में जाने और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मैम हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं ऐसे में इस बात पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ऐसे में क्या इस तरह की नीतियां हैं कि हमारा हैंडलूम विदेशी बाजारों में भी अपनी पहचान भी बनाए रखे और ज्यादा विस्तृत पहुंचे?
1: हैंडलूम का जो सस्टेनेबिलिटी एंगल है वो मोर देन इंडिया, एक्चुअली फॉरेनर्स उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
0: जी,
1: लेकिन पहले हमारा ये इश्यू था कि हमारे पास ना कोई रिपोर्ट था ना कोई स्टडी था जो एक्चुअली ये बता सके कि हैंडलूम पे जब कपड़े बुनते हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है।
0: जी,
1: सो लास्ट ईयर हमने इसी अराउंड दिस टाइम आईआईटी दिल्ली द्वारा हमने एक स्टडी संचालित किया था, तो उसका ये रिजल्ट आ गया है कि अगर हम हैंडलूम पे कपड़ा बुने कंपेयर टू मिल मेड, इट इज अराउंड लेस देन 1/4 ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये जो है, एंड इसका सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंटरनेशनल मार्केट्स अब पूरी तरह दे आर लुकिंग एट सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, खासकर यूरोप में जो देश है, यूके जो है, वो बहुत इस पर इंसिस्ट करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो कॉन्शियस। हाल ही में भारत टेक्स हुआ था जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था जो एक्सपोर्ट पे फोकस करता था, तो वहां पर भी ये बार बार हर मीटिंग में ये दोहराया गया कि सर्कुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द चैलेंज बिफोर अस इज टू इंटेग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू द हैंडलूम। तो इनहेरेंटली सस्टेनेबल है लेकिन उसको सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी चेकिंग एंड वो एक्सपोर्टेबल लेवल तक उसको लेके आना है। तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसमें बहुत काम कर रहे हैं एंड हम ये भी अभी एक नेक्स्ट ईयर फ्रांस में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है प्रीमियर विजन, तो इंडिया हैज द हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ अ पार्टनर फॉर प्रीमियर विजन एंड वी विल बी शोकेसिंग इट बिफोर एन इंटरनेशनल ऑडियंस कि हमारा हैंडलूम क्या है, विरासत क्या है, प्लस उसका सस्टेनेबिलिटी एंगल क्या है।
0: एक बड़ी समस्या आजकल व्यवहारिक तौर पर ये आती है मैम कि घर में आम तौर पर

0: कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास भी, बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और ऐसे में फैशन भी तेजी से बदलता है, तो हमारा वार्डरोब चेंज होता रहता है। एक चुनौती होती है कि जो पुराने कपड़े हैं, जो पहनने की स्थिति में है, उनका हम क्या करें? क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अगर हथकरघा के उत्पाद हैं तो वो कहीं उचित माध्यम से पहुंचाए जा सके और उनका रीयूज हो सके, बजाय इसके कि हम उन्हें फेंके या किसी को दें?
1: एक्चुअली ये रीयूज का कल्चर, रिसाइकलिंग का जो कल्चर है, तो हाल ही में हमने एक इवेंट किया था वीव द फ्यूचर। तो वीव द फ्यूचर में हमने क्या किया, वी केप्ट अ बॉक्स
0: जी,
1: ताकि आपके जो यूज्ड कपड़े हैं आप वहां दे दीजिए, एंड वी कलेक्टेड यूज्ड कपड़े एंड वी स्टार्टेड, इट इज गिवन टू आवर रिसाइकलिंग सेंटर्स। तो अभी ऐसे प्रयास चल रहे हैं हमारे जो सिटीज में, कुछ ऐसे चल रहे हैं। एंड हमने एक ऑक्शन भी किया था, जो हमारा कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ कपड़े डोनेट किए थे, तो उसका हमने ऑनलाइन ऑक्शन भी किया था, जो भी बहुत सक्सेसफुल था। तो ऐसे प्रयास हो रहे हैं एंड खासकर हैंडलूम्स का, इससे जो मिलता है कि ऐसे अगर रिसाइकल धागे होते हैं वो नॉर्मली जो बड़े मशीन में वो चलेगा नहीं, द बिग मशीन में वो ज्यादा ब्रेकेज और श्रिंकेज होता है, तो उसके लिए हथकरघा ही मोर सूटेबल है। तो इसलिए हैंडलूम एंड ये रिसाइकलिंग सब साथ में लेके चलते हैं। एंड वीव द फ्यूचर के अभी तक हमने 4 एडिशंस किए हैं, अब ये 5th एडिशन विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद द नेशनल हैंडलूम डे।
0: जी, हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, जैसे गांधी स्मृति और राजघाट पर जो संस्थान है वो चरखे का उपयोग अभी भी करते हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे काटा जाता है, कताई क्या होती है, कतान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर वॉलंटियरली जाकर युवा जो है वो सीख सकें कि हथकरघा कैसे चलाना है, भले ही वो उनका पेशा नहीं है?
1: एक्चुअली आपका सजेशन बहुत अच्छा है एंड अभी सेंट्रल कॉटेज एम्पोरी में हमारा एक एग्जीबिशन है द वीव्स ऑफ इंडिया, तो वहां पर वी हैव सेट दी स्मॉल लूम्स, हम उसको टॉय लूम्स या एक्सपीरियंशियल लूम्स हम बोलते हैं, बहुत छोटे से लूम्स है
0: जी।
1: तो हम वहां बहुत इंटरेस्ट भी है, छोटे बच्चे महिलाएं सब जाके ट्राई आउट कर रहे हैं। देखो वो इतना आसान भी नहीं है, द एक्चुअल जो हथकरघा है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट ये सिंपल थिंग ऑफ यू नो जॉइनिंग अ वार्प एंड वेफ्ट जिससे कपड़ा निकलता है वो एक्चुअली हम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसे एक्सपीरियंशियल चीजें हम अपने जो एग्जीबिशंस या एक्सपोस होते हैं हम उसमें वो शामिल कर रहे हैं
0: जी, उसमें शामिल किया जा रहा है। आमतौर पर ये होता है हैंडलूम पहनना सभी चाहते हैं और हैंडलूम की जो साड़ियां होती हैं बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हाथ से तैयार की गई हैं और बहुत लंबा समय लगा है बुनकर को उसे तैयार करने में, तो इसलिए वो अक्सर महंगी भी होती हैं। अभी तक हमने जो बात की वो इस तरह की योजनाओं की है जिनका लाभ बुनकर उठा सकते हैं। क्या जो खरीदार हैं उनको भी हैंडलूम खरीदने पर कुछ विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है?
1: एक्चुअली मिनिस्ट्री का ये थॉट है कि कस्टमर को, हालांकि कुछ राज्य सरकार सब्सिडी दे रहे हैं
0: जी,
1: बट हमारा ये you know what we are requesting the consumers is to understand and appreciate. देखो जब हम एक बार देखें कि ये कैसे बनता है
0: जी,
1: एक बार एक बुनकर के घर में जाएंगे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस यू नो इंक्रीज प्राइस देने में कोई हिचक नहीं होगी। तो द स्टोरी ऑफ द वीवर, जब आप ये समझ सके एक प्रोडक्ट पे अगर उसमें QR कोड स्कैन करने पे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, वहां से एक बुनकर की कारीगरी है। देखो हम सोचते हैं कि वीविंग इज इजी, इट इज नॉट इजी
0: जी,
1: इट इज एडवांस्ड मैथमेटिक्स। मैंने ये जो वार्प एंड वेफ्ट का जो हिस्सा है एंड उसमें देखो वार्प एंड वेफ्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें डिजाइन बनाने के लिए द काइंड ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स दैट हैज टू बी डन इज रियली कॉम्प्लेक्स। तो माय पॉइंट हियर वुड बी कि हमें खरीदना चाहिए एंड जो एक्चुअली वीवर को सीट एज अ प्रीमियम आर्टिकल सो दैट वी रीच द प्रीमियम मार्केट एंड ताकि वीवर को अच्छा वेजेस भी मिले। एट द एंड ऑफ द डे वीवर को अच्छा वेजेस मिलना चाहिए। नाउ एज फार एज अ कस्टमर इज कंसर्न, अगर आप वीवर से डायरेक्टली खरीदेंगे तो यू विल गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस। अगर बीच में मिडल मैन आ जाए, बीच में एक मार्केटिंग एजेंसी आ जाए तो प्राइसेस ज्यादा सा इंक्रीज होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि हम जो मेलाएं लगाते हैं जब भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, जब आप वीवर से डायरेक्टली खरीद सके तो आप उसका लाभ उठाए। दूसरा, मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है indiahandmade.com। इंडिया हैंडमेड एक ऐसा पोर्टल है जहां वीवर खुद अपना डालता है, वीवर पुट्स हिज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो वहां पर भी आपको बहुत रीजनेबल रेट्स मिल जाएंगे। तो इन सुविधाओं का आप इस्तेमाल करें
0: जी।

0: एक अनुभव मेरा इस बारे में बहुत अच्छा रहा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं कि वो जो स्पॉट रखते हैं घुमाने के लिए, साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं, उसमें उस जगह के बुनकरों को भी शामिल किया जाए। तो हमने एक इस तरह का दौरा किया और उसमें हमने ये जाना, जैसे अभी आपने कहा कि कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, उसमें बुनकर ने हमें बताया कि जो हमारा राज्य का पेड़ है हम उसकी पत्तियां इसमें लगाते हैं, जो हमारा राज्य का पक्षी है हम उसकी छवि इसमें देते हैं, और इस तरह से हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं अपना काम करते करते। तो ट्रैवल एजेंसीज भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
1: बहुत अच्छा सोच है, बिकॉज देखो टूरिज्म एंड हैंडलूम
0: जी
1: का बहुत अच्छा मेल हो सकता है। तो हमारा एक कार्यक्रम भी है, यह है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज
0: जी।
1: तो क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में हम ये करते हैं कि जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल है, अगर अगल बगल में कोई हैंडलूम का क्लस्टर है, हम उसको लिंक करते हैं, लिंक करते हैं एंड वहां, ताकि टूरिस्ट वहां जा सके, वीवर के घर जा सके, वीविंग का कोई एक्सपीरियंस ले सके, एंड एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, उनका मार्केटिंग भी हो
0: जी।
1: तो अभी देश में हमारे 6 क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस ऑलरेडी चालू हैं और 3 में अभी काम चल रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट है ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। आपने सही पहचाना कि देखो जो धागा यूज किया जाता है, जो मोटिफ करते हैं, जो रंगाई करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम उसको छोड़ ना दे, हम उसको मेंटेन करें, उसको चेरिश करें, उसको आगे लेके जाए
0: जी। तो इसी मोड पर मैम, आपकी पसंद का एक और गाना,
1: अभी एक रिसेंटली एक मूवी आया था कारवा
0: जी,
1: तो जहाँ हमारा एक यंग स्टार है दुलकर, तो जो कि ममूटी जी, बहुत रिनाउंड मलयालम एक्टर है, उनका बेटा है दुलकर, एंड देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग इन दैट, एक छोटा सा फसाना
0: जी,
1: वो प्ले करें
0: जी। बिल्कुल यही गीत सुनवाते हैं।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम अपने बुनकरों की दिनचर्या को जान रहे हैं, उनके जीवन की उपलब्धियां भी समझ रहे हैं और उनके संघर्ष भी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले हमारे देसी धागों की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में। और कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान है IAS ऑफिसर डॉक्टर एम बीना, आप डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम, अभी हमने बात की कि किस तरह से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं हैंडलूम से और किस तरह से जो बुनकर हैं वो भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें आसानी से पा रहे हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए?
1: एक्चुअली हैंडलूम जो है वो ट्रेडिशनल है, बट ये नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली हैंडलूम को स्ट्रेंथन करने के लिए वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो उसमें एक दो प्रयास हमारे मिनिस्ट्री की ओर से चल रहा है। तो एक तो है कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए एक संस्था का अभी हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है
0: जी।
1: वो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो हम IIT दिल्ली के साथ हम कर रहे हैं, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी में, बेटर लूम्स में, बेटर एर्गोनॉमिक्स में, नए डिजाइन में, नए डाइस में, इन सब में रिसर्च करे और उस रिसर्च का जो नतीजा है हमारे व्यूअर्स को दे। दूसरा, हम फ्रॉम द यूथ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, हम एक लूम हैकाथॉन हमने अनाउंस किया था
0: जी।
1: काफी उसमें रिस्पॉन्स भी आया है एंड दैट इज ऑल्सो वन वे जहां हम अच्छे आइडिया समेट सके ताकि हम हैंडलूम सेक्टर में यूज करें
0: जी।
1: तीसरा है, हमने अभी एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है। देखो, ये ट्रेसेबिलिटी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडलूम सेक्टर, कि एक्चुअली वो हैंडलूम पे बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए एक IoT डिवाइस है जो लूम पे लगाया जाता है एंड ये जो डिवाइस है वो एक तो वो GI टैग्ड है, तो ये कहाँ पे बुन रहा है वो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाता है। दूसरा, जो लूम का जो मूवमेंट है वो उसको कैप्चर करता है। देखो, अगर पाउडलूम में है तो मूवमेंट इज एंटायरली यूनिफॉर्म, अगर हाथ से बन रहा है तो एक मूवमेंट में ज्यादा फोर्स होगा, एक में कम होगा। तो इन अ वे इट इज ऑथेंटिकेशन, इन अ वे इट इज जियो टैगिंग एंड कितना धागा बन रहा है एक दिन, वो पूरा डेटा उसमें कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी हम एक बड़े स्तर पर पायलट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा एंड अब नए फेस में हम 10,000 ऐसे सच डिवाइसेस हम लेके आ रहे हैं
0: जी। हथकरघा घाट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जी।
1: हैंडलूम हार्ट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां हम एक अच्छा सा एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे इन दिल्ली वी आर वर्किंग फॉर दैट, ताकि एक अच्छा सा रिटेल स्पेस मिले जो हमारे हैंडलूम के बुनकर को, प्लस जो स्टार्टअप्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो निफ्ट के यंग डिजाइनर्स पास आउट हो रहे हैं, उन सबको मिला के हम एक हैंडलूम हाट का भी आयोजन कर रहे हैं
0: जी। क्या बुनकरों से संवाद का कोई सीधा तरीका है जहां वो अपनी समस्याएं भी रख सके? कोई ऐसा मंच उपलब्ध करवाया गया है?
1: देयर इज समथिंग कॉल्ड द चौपाल
0: जी।
1: तो हमारे सारे वीवर्स सर्विस सेंटर्स फील्ड पे जाते हैं एंड क्लस्टर लेवल पे चौपाल कराते हैं। तो एक और तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं एंड जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हर बुनकर को ये जानकारी नहीं है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो गांव में जाते हैं, चौपाल कराते हैं, स्कीम के बारे में बताते हैं एंड कहीं कहीं तो वहीं से एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। तो ये है एक एवेन्यू। दूसरा, हम जो भी हमारे बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है समर्थ ट्रेनिंग। तो समर्थ ट्रेनिंग के तहत वीवर को एक अच्छा एक है कि उसको वेज कॉम्पेंसेशन मिलता है। कभी कभी ये लोग ट्रेनिंग पे नहीं आते क्योंकि एक दिन का उनका वेजेस चला जाता है। तो अंडर द स्कीम वी प्रोवाइड फॉर वेज कॉम्पेंसेशन। तो समर्थ हमारा

0: बहुत सक्सेसफुल स्कीम है हैंडलूम सेक्टर में, तो वहाँ भी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दीज मैटर्स. एंड हैंडलूम दिवस जैसे जो बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं तो वो तो हर क्लस्टर में, हर WOC लेवल पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, ये सब दीज आर प्लेसेस वेयर वी कम टूगेदर. अभी हाल ही में बजट में एक नया स्कीम अनाउंस हुआ है, नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, तो उसको बनाने के लिए काफी चर्चाएं हुई एट द फील्ड लेवल, एट द स्टेट लेवल, जो इसमें विशेषज्ञ हैं उनसे भी काफी बातचीत हुई है. तो ये हमेशा एक ऐसे वार्तालाप का हम स्वागत करते हैं ताकि वीवर्स भी अपना मन रख सके हमारे पास.
1: जी, इस विषय में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गाना.

0: इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे हथकरघा से जुड़े हुई जो आर्थिक पक्ष है उसकी भी, साथ ही सरकार ने जो योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं उनकी और सामाजिक पक्ष भी। अब बात करते हैं हथकरघा से जुड़े हुए स्वास्थ्य पक्ष की। हम कहते हैं कि हैंडलूम जो है, ये जो धागे हैं, ये स्किन फ्रेंडली है और स्किन डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हम सही तरीके के कपड़े पहने, वो फैब्रिक जो है वो ठीक हो। इस बारे में मैम क्या कहेंगी?
1: हैंडलूम जो बनता है वो ज्यादातर नेचुरल फाइबर्स पे बनता है, एंड क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स पे बनता है एंड मोस्ट ऑफ देम यूज नेचुरल डाइस ऑल्सो। आजकल बहुत नेचुरल डाइस का भी यूज हो रहा है
0: जी।
1: तो हमारा एक स्टार्टअप है जो साउथ में है, तो उन्होंने एक योगा मैट बनाया है हैंडलूम पे। तो नॉर्मली हम योगा मैट जो चाइनीज इंपोर्टेड है वो यूज करते हैं, मैंने योगा करते हैं एंड उसी के फ्यूम्स हम इनहेल करते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो हैंडलूम योगा मैट बनाते हैं ताकि जब हम योगा करें और पसीना निकले, जो हम फ्यूम्स इनहेल करें वो बहुत यू नो हर्ब्स जैसे है उस

0: उसमें मिलाया जाता है। अगर हैंडलूम का भी बेडशीट यूज़ करें, हैंडलूम के कपड़े यूज़ करें, वो डेफिनेटली वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल कलरिंग भी आ गया है ताकि वो और बेटर बन जाए।
1: जी, हम बात कर रहे थे कि युवा किस तरह से और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स का। ऐसे में सोवनियर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर उस इंडस्ट्री से हमें लोग इस समय सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है?
0: तो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे सोवनियर बन सकते हैं एंड उसको हमें ज़्यादा यूज़ करना है। एंड यूथ के लिए एक्चुअली मैं अपने बुनकर भाइयों को भी बोलती हूँ कि अब यूथ के लिए जो कपड़े बनने हैं, तो हाल ही में हमने एक डिज़ाइनर कॉन्क्लेव के लिए एक कॉन्टेस्ट जैसे रखा। देश में जो 72 क्लस्टर्स थे जहाँ हम क्लस्टर डिज़ाइनर्स थे, हमने एप्लीकेशन मंगवाए एंड इतने अच्छे नए तरीके के ड्रेसेस आए हैं। मैंने जो हैंडलूम में यू नो पहले तो हम ओनली साड़ीज देखते थे, लेकिन अब इतना इनोवेशन अब चल रहा है ताकि युवा भी इसमें जरूर आकर्षित होंगे।
1: जी, और हम तो अपने सभी श्रोताओं से ये कहेंगे ही कि जैसा कि मैम ने भी कहा कि जब भी कभी कोई उपहार दे, कोई भेंट दे किसी को, उसमें हैंडलूम आइटम जरूर रखें। जब कभी दोस्ती यारी निभानी हो तब भी आप कोई अच्छा सा गिफ्ट लें तो उसमें भी ये याद रखें कि हमारी जेब से जो पैसा निकलता है वो देश में घूमे और सही हाथों में पहुंचे, तो हमारा छोटा सा उपहार भी बुनकर जो भाई बहन है उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। चलते चलते मैम, क्या संदेश आपका हमारे सभी श्रोताओं के लिए?
0: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 7 अगस्त को तो आपको पहनना ही है हैंडलूम, तो आपको हर भारतीय को 7 अगस्त को हैंडलूम पहनना है
1: जी।
0: और उससे ऊपर हम हैंडलूम को जीवन का हिस्सा बनाएं। ये बुनकर की जो कला है, उनकी जो सर्गात्मकता है, उसको आप प्रोत्साहन दें, उनका हौसला बढ़ाएं एंड सबसे ऊपर हमारी विरासत को हम अपनाएं, उस पर फकर करें, उसको पूरी तरह से अपनाएं
1: जी।
0: तो हैंडलूम को पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए और जीवन में उसका हिस्सा बना दीजिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और हम कहेंगे कि ये वो संस्कृति और ये वो विरासत है जो पहनी जा सकती है, जिसे हम हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने देश के कोने कोने में भी और साथ ही भारत से बाहर भी। आप सुन रहे थे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हमारी विशेषज्ञ थी, हमारी अतिथि थी डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर आप और डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम ने हमसे बात की और बहुत सारे नए विचार भी हमें पता चले और साथ ही ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमने जाना, हमारे श्रोताओं ने जाना, जो खास तौर से बुनकर जो है उनके लिए है, उनके कल्याण के लिए है। मैम, आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हैंडलूम के लिए टाइम दिया, अपने देश के बुनकरों को आपने याद किया, थैंक यू।
1: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: इस अंधेरे में सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए आप सोचिए कि जब आपने अपना पहला सपना देखा था
1: कि माँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा और माँ से ये नहीं कहा होगा कि मैं एक्टर बनूंगा माँ और गरीबों को तंबाकू बेचूंगा। आप ऐसा कहते तो माँ आपको एक चांटा मार देती, या डॉक्टर बनूंगा माँ और मैं गरीबों को लूटूंगा, गलत दवाइयां देके पैसे कमाऊंगा, या माँ मैं इंजीनियर बनूंगा, रेत डालूंगा सीमेंट में और बहुत कमाई करूंगा, या माँ मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा और इतना करप्ट बनूंगा कि पूरा का पूरा देश बेच डालूंगा। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। आज वापस उस पल पे चलते हैं जब हमने अपना

पहला सपना देखा था जो शायद हम भूल चुके हैं। चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से मिलते हैं। तू हंस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है। जो झूठ के पीछे भागे तू, हर मोड़ पे झूठ को सहना है। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है। चल फिर खुशियों से मिलते हैं, चल यार खुद से मिलते हैं, चल वापस उस जीरो पे चलते हैं।

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं और अब नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का साहस, बलिदान और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। 1942 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पर भारत छोड़ो का नारा दिया था। अमेरिका सरकार उस नियम को खत्म करने पर विचार कर रही है जिसके तहत नौकरी जाने के बाद कुछ विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो नौकरी जाने के बाद कई H-1B कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। समाचार में आगे, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ शांति और बातचीत का रास्ता जारी रखेगा। साफ किया कि ईरान अमरीका के कदमों के अनुसार ही अपनी प्रतिबद्धताएं निभाएगा। और समाचारों के अंत में, राज्य में गाय और भैंस के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। प्रमुख सहकारी और निजी डेयरियों के प्रतिनिधियों ने दूध को दाम बढ़ाने पर सहमति जताई है। कीमत वृद्धि 11 अगस्त से लागू होगी। यह निर्णय मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो सेवा पर। रविवार की दोपहर को आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। दोपहर के 12:02 हो गए हैं, म्यूजिक कैफे कार्यक्रम शुरू हुआ है और रविवार के दिन आज रोशनी आपके साथ है। छुट्टी का दिन जो होता है खास होता है, अपनों के लिए होता है, परिवार के लिए होता है और कई बार काम तो बहुत सारे होते हैं जो काम के यानी हमारे नौकरी के व्यतिरिक्त होते हैं, लेकिन उस काम के बीच भी थोड़ा सा एक बहुत प्यारा सा वक्त जो है हम निकाल ही लेते हैं। तो ऐसा ही बहुत प्यारा सा और खुशी भरा माहौल होने वाला है 12:02 के बीच 107.1 पर। अब 12:02 के बीच क्या बातें होने वाली है, उसके लिए क्या करना है, बस मेरे साथ बने रहो, धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। और इतने दिनों बाद हम मिले हैं तो अब ऐसा करते हैं, बातें शुरू हो गई है, एक गाना भी जब सुन लेंगे तो माहौल जो है अपने आप बन जाएगा।

पसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर, टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला

अब छुट्टियों के दिन और क्या हो सकता है, आराम हो सकता है, बहुत अच्छा वक्त बीत सकता है। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं ना जो वीकेंड पर काम करते हैं, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार जो होता है उनका एक ज़रूरी काम होता है, या फिर कई सारे लोग कॉलेज करते हैं और वीकेंड पर जो है काम पर जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया होगा वीकेंड्स में, या फिर गर्मियों की छुट्टियों में, दिवाली वेकेशंस में जो है जॉब या फिर इंटर्नशिप की है। कई सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि उनकी मजबूरी होती है, इसलिए उन्हें काम करना पड़ता है, किसी के लिए ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ एक्सपीरियंस बटोरने के लिए जो होते हैं, जब भी वक्त मिलता है कोई ना कोई अलग काम जो है उसकी तलाश में होते हैं, और अलग अलग काम करके कई सारे अनुभव जो है वो अपने हिस्से कर लेते हैं। अब जब ऐसे सारे काम लोग करते हैं तब बहुत सारे लोगों का बस यही कहना है, वाकई उस दौरान काम सीखा या नहीं सीखा ये पता नहीं, लेकिन ऐसे जॉब्स में बहुत सारे ऊटपटांग लोग भी मिलते हैं और हर जगह बहुत वर्क कल्चर जो होता है अलग होता है। तो उन सारे अलग अलग वर्क कल्चर को लेकर जो है बहुत अच्छा परिचय होता है। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों के बारे में और वर्क कल्चर्स को लेकर काफ़ी मज़ेदार से किस्से होते हैं। रविवार का दिन है तो ऐसे ही काम से जुड़ी बातें, लेकिन उसमें भी जो है ना आप और मैं मिलकर कोई ना कोई हंसी मजाक या मज़ेदार सा किस्सा जो है ढूंढ ही लेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: एफएमरीन वो पर मैं हूँ रोशनी। कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक कैफे और अब हम जो गाना सुनने वाले हैं वो सारे हमारे उन दोस्तों के लिए, उन लिसनर्स के लिए जो रविवार के चलते उन्होंने सोचा है कि क्यों ना जो नहाने का प्रोग्राम है उसको रविवार के दिन छुट्टी दे दे या फिर जितना दूर हो सके उतना लेट तक जो है उसे पोस्टपोन कर सके। इसलिए अगर इस वक्त अगर आप सोच रहे हो ये गाना क्यों प्ले किया जा रहा है, तो उन्हीं सारे दोस्तों के लिए पति पत्नी और वो फिल्म का गाना महेंद्र कपूर, आशा भोसले और सुषमा श्रेष्ठा की आवाज़ों में ओनली ऑन 107.1।
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से न

0: गाते गुनगुनाते हुए आपने इस गाने को इतना दिल से पसंद किया है, तो सभी लिसनर्स को दिल से शुक्रिया कहते हुए कार्यक्रम में जिस बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा जो है गौर कर ही देते हैं। अब देखो, हमने फिल्मों में ऐसे कई बार देखा है कि स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल जो होते हैं वो बच्चों का टिफिन खा देते हैं। अब असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि कुछ दोस्तों के साथ कुछ वक्त बाद हमें पता चलता है, लेकिन ये समझ आता है कि उन्होंने शुरुआत में हमसे इसीलिए दोस्ती की थी क्योंकि उन्हें हमारा टिफ़िन बहुत पसंद आता था। अब ये स्कूल और कॉलेज दिनों के लिए बहुत आम सी बात है, लेकिन ऐसा वाकई ऑफिस के दिनों में हो सकता है क्या? लेकिन जो नवी मुंबई में रहने वाले साहिल है, उनका ऐसा अनुभव रहा है कि उनके कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक एड एजेंसी में इंटर्नशिप की थी और उनके साथ और दो लड़के भी थे, तो ये तीनों लड़के जो थे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लंच टाइम में एक साथ मिलकर जो है टिफिन खाते थे और उसी दौरान एक दूसरे सेक्शंस के जो मैनेजर है हमेशा उनसे मिलने आते थे, खूब बातें करते थे, काफी गाइडेंस देते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऐसा हुआ, हर रोज बातें होती थी, कुछ दिन कुछ हफ्ते बीत गए, तब जाकर इन तीनों लड़कों को समझ आया गप्पे लड़ाते लड़ाते ये जो मैनेजर है चुपचाप से इन तीनों का टिफिन जो है चट कर जाते थे। तब साहिल जो है उनका कहना है इस बात को सालों बीत गए हैं, वो उस एड एजेंसी में वाकई बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन ये टिफिन का जो किस्सा है वो आज तक मैं नहीं भूला हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे किस्से होते हैं, बातें होती है काम की जगह पर जो होती है, काम के अलावा वो ज़्यादातर जो है लंबे समय तक हमारे आस पास रहती है। ऐसा ही कोई किस्सा आपके पास भी है, अनुभव आपके पास है, तो ज़रूर फोन कॉल करके मैसेज करके मुझ तक पहुंचाना। और तब तक के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बस आपके लिए एक गाना प्ले करती हूँ ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे

आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर म्यूजिक कैफे कार्यक्रम में। जब ऑफिस के दिनों की बातें हो रही है, खास तौर पे वो सारे काम जो छुट्टियों के दिनों में किए जाते हैं, या फिर लोग जब गर्मी की छुट्टियां होती है, वेकेशंस होते हैं, उस दौरान अनुभव के लिए करते हैं। और जैसे हमने शुरुआत में ही बात की, कुछ सारे लोगों के लिए वो ज़रूरत होती है कि जब छुट्टियों में काम कर लेते हैं तो पूरा साल वो अच्छे से इत्मीनान से जो है कॉलेज की पढ़ाई की और जो है ध्यान दे सकते हैं। लेकिन खास तौर पर वो सारे लोग जो सिर्फ अनुभव के लिए ऐसे छोटे छोटे काम करने जाते हैं, उन सभी लोगों का बहुत अलग अलग अनुभव रहा है। और उनमें से एक जो है, उनका तो ऐसा कहना है कि उन्होंने भी अपने समर वेकेशन में ऐसा एक छोटा सा काम किया था, कुछ ही महीनों का काम था, लेकिन वहाँ पर जो भी कुछ उनके हिस्से आया एक्सपीरियंस, उनका यही कहना है कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इसीलिए सिर्फ मैंने अपने घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक चीज़ जो मेरी बस राइड थी, सिर्फ उसी को एंजॉय किया। यानी समझ जाओ उनको वाकई काम करते हुए और उस ऑफिस में कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा। और जैसे कई सारे लोगों ने अपने टिफ़िन के किस्से सुनाए हैं, स्कूल कॉलेज के दिनों की तरह ऑफिस के जो भी ये लंच ब्रेक्स होते हैं वो भी कई सारे लोगों को सालों सालों बाद याद रहते हैं। और ऐसा भी हमारे कुछ लिसनर्स फ़ोन करके बता रहे हैं कि उन्होंने भी पढ़ाई करते वक्त कुछ ऐसे छोटे मोटे जॉब्स किए थे, और उस दौरान ऑफिस में कुछ ही वक्त में कुछ ऐसे यार दोस्त मिले, सब अब अलग अलग जगह पर है, अलग अलग शहर पर है, कई सारे लोगों ने तो अपनी फील्ड भी चेंज कर दी है, लेकिन वो दोस्ती जो है वो आज भी कायम है। और उन्हीं दोस्तों को याद करते हुए हमारा अगला गाना सुदेश भोसले की आवाज़ में।

कॉलेज में बहुत ही मस्त मौला रहते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ही जब ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ पर काम करने लगते हैं, तब समझ आता है कि सारे चेहरे जो मासूम लगते हैं वो मासूम होते नहीं। राम प्रजापति बहुत सही बात कही है, तो क्यों ना साथ मिलके इन्हीं की पसंद का अब हम गाना सुनते हैं। ओनली ऑन 107.1 FM रेनबो, मैं हूँ रोशनी और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक कैफे।

तलाश फिल्म के इस गाने के साथ वो सारे दोस्त वो सारे कलीग्स याद आ गए जिनके लिए ये गाना बखूबी जो है उनके लिए ही है ऐसे लगता है। लेकिन जाने दो, छोड़ दो, कुछ अच्छे अनुभव भी हमारे हिस्से आए हैं काम करते हुए, क्यों ना उन्हीं को याद कर ले। जैसे सायन में रहने वाली मिथिला जो है उनका कॉल आया और उनका ऐसा कहना है कि 12 की छुट्टियों में उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया था और उस दौरान जो है लंबी छुट्टी थी इसलिए उन्हें काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन सिर्फ उन छुट्टियों में ही उन्होंने काम किया, उसके बाद डिग्री कॉलेज और फिर मास्टर्स सभी उनकी आगे की पढ़ाई है वो पूरी कर ली, उसके बाद वाकई एक दूसरे फील्ड में उन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी जो है वो मिल भी गई, अच्छा पैकेज मिला। और फिर जैसे जैसे पैसे जो है इकट्ठा होते गए उन्होंने अपनी जो वांडरलस्ट है उसको पूरी तरह खुली छूट दी। और तब ऐसे हुआ कि कॉलेज की छुट्टियों में जो की गई इंटर्नशिप थी उसका पूरा का पूरा अनुभव जो है अब उनके ट्रैवल प्लान्स में ज़िंदगी भर काम आ रहा है, क्योंकि उस कंपनी में उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा कि किस तरह बुकिंग करनी होती है, किस दौरान करनी होती है, किस तरह पूरा प्लान बनाना होता है। और अब वो खुद जब अच्छा खासा एक इनकम कमा रही है तो ट्रैवल भी उतने ही अच्छे तरीके से कर रही है, तो वो हमेशा अपने आप से ये कहती है कि बस कुछ ही महीनों का वहाँ पर अनुभव था लेकिन एक ऐसी बहुत ही अच्छी सीख मिली है जो ज़िंदगी भर उनके काम आए। ऐसे भी रहे ना काम के किस्से कि कुछ ही वक्त के लिए हमने वहाँ पर काम किया था लेकिन ज़िंदगी भर के लिए फ़ायदा फ़ायदा और फ़ायदा ही वहाँ पर हुआ।

सुबह कैफे में आज रविवार के दिन होते हुए हमने काम से बातें की, लेकिन एक ऐसा काम था जो बहुत कम वक्त के लिए हमारी ज़िंदगी में आया, लेकिन उसी कम वक्त में इतना कुछ वहाँ पर हमने एक्सपीरियंस किया, ऐसे कुछ अलग अलग लोगों से मिले कि याद जो है ज़िंदगी भर के लिए साथ बनी रही और दोस्तों की महफिल जमी हुई है। तो सोचा क्यों ना वही सारी जो किस्से हैं उन्हें आज ताज़ा कर ले। ताज़ा से कुछ खास और भी करने का दिल कर रहा है, उसके लिए आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी जगहों पर हम जाते हैं ना, तब कुछ ऐसा लगने लगता है जो दिल की बात है वो गाने के ज़रिए जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं। तो उसी गाने के साथ आज का जो म्यूज़िक कैफे कार्यक्रम है यहीं पर पूरा होगा। रोशनी आपको मिलेगी समाचारों के उस पार। अभी सिलसिला फिल्म से गाना लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में, माफ़ करिएगा, लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज़ में।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात

0: मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
1: नमस्कार, 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। और अब कुछ ही पलों में यानी दो

0: शहर के ठीक 1 बजे हम सुनेंगे आकाशवाणी के छत्रपति संभाजी नगर से मराठी समाचार। तो बने रहो न्यूज ऑन एयर ऐप और 107
1: नमस्कार, आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर केंद्राच

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: समाचारों के बाद हिट एंड हॉट कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और पता है आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि आप किस थीम के हिसाब से जो है अपनी पसंद का गाना मुझ तक पहुंचाए। रविवार का दिन है और कई बार ऐसे होता है हम मिलते हैं, मुलाकात होती है, पुरानी बातें भी याद कर लेते हैं और पुराने गीत जो है उनका भी मज़ा लेते हैं, लेकिन कई बार पुराने के चक्कर में जो नया है, जो ताज़ा है और हमारे सामने ही है, उसे अनदेखा कर देते हैं। तो क्यों ना आज हम सभी मिलकर जो ताज़ा लेटेस्ट फिल्में हैं उन्हीं के गाने हम सुने। तो 2024, 2025, 2026 के जितने भी सुपरहिट फिल्में और उनके सुपरहिट गीत है उनकी फरमाइश आज आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। 2 बजे का वक्त है तो जल्दी फिलहाल आपका लेटेस्ट फेवरेट ट्रैक कौन सा है और अभी आप FM रेनबो पर वही गाना सुनना चाहते हो तो उस गाने का नाम, अपना नाम, अपने शहर का नाम रोशनी तक जरूर पहुंचाना।

कितने दिल से पूरे भाव के साथ जो है माँ का स्वागत किया गया है। माँ फिल्म का गाना रवि मिश्रा की आवाज़ में, और उसके बाद जो है मौसम का हाल जो है बड़ा ही खूबसूरत है हमारे शहर में। आपके शहर में क्या हाल है अब ज़रूर बताना। अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में मेट्रो इन दिनों, इस फिल्म का गाना।

एक और गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। तो जितने भी सारे अरिजीत सिंह के फैंस अभी हमें सुन रहे हैं वो जरूर खुश होंगे, और साथ ही साथ अमरावती से पंकज महोत की भी खुश होने की बारी है, क्योंकि अब उन्हीं के पसंद का गाना हम सुनेंगे, लापता लेडीज फिल्म से गाना, और ये कॉम्पोजिशन है राम संपत की।

सितारे जमीन पर फिल्म का बहुत ही मजेदार सा फन सा ट्रैक ओनली ऑन एफएम रेनबो, एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत और मजेदार सा ट्रैक का वक्त हो गया है। और जब मान लो हम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश फिल्मों के गाने सुन रहे हैं, उनमें अचानक से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो हमेशा हमेशा हमारी फेवरेट रही है, तो जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाकई सुपर डुपर हिट होता है। और अब ऐसा ही होने वाला है क्योंकि भूल भुलैया 3 फिल्म से गाना सोनू निगम की आवाज़ में।

बड़े पर्दे पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर दिन आजकल जो है हर हफ्ते एक नई फिल्म आती है, उन सभी फिल्मों के बहुत गाने हैं, हम उन सभी गानों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अचानक से कोई एक ऐसा गाना हम सुन लेते हैं जिसमें ओल्ड चार्म वाली फीलिंग होती है, वो जो लार्जर देन लाइफ इफेक्ट होता है वो उन गाने में जो है नज़र आता है, सुनाई देता है, और फिर अचानक वही गाना जो है हमारा फेवरेट बन जाता है। वैसा ही एक गाना जो है डंकी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस गाने की जो फरमाइश की है इंदौर से अजय साखरे ने की है। तो हम सभी मिलकर इन्हीं के पसंद का गाना सुनते हैं। FM रेनबो पर मैं हूँ रोशनी और कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट।

सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत करीब आज भी वही पुराने गाने हैं। लेकिन शाहरुख खान जो है वो एवरग्रीन है और उन्हीं के फिल्म का गाना अभी हमने सुना डंकी फिल्म से। एक और गाने की फरमाइश आई है जवान फिल्म से और वो रिक्वेस्ट हमें भेजी है अहमदाबाद से आकांक्षा ने। आकांक्षा सिन्हा हमें सुन रही है तो उनकी पसंद का गाना सुनेंगे और उसके तुरंत बाद हमारी माहिम और मुंबई की ही दीपा पालकर शुरुआत से जुड़ी हुई है, वो सुनना चाहती है तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया, इस फिल्म से गाना। तो बैक टू बैक दो गाने, गानों के बीच अगर आपको भी अपने पसंद का गाना सुनना है तो ज़रूर जल्दी जल्दी फ़ोन करो, मैसेज करो और मुझे अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाओ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।

0: से आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आखिरी के 9 मिनट बाकी है और अब किसे मौका मिलने वाला है, किसके पसंद का गाना हम सुनेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा इत्तफाक है कि हमें वडाला से नयन ने कॉल किया है, मैसेज किया है, और उनके लिए अब हम प्ले करने वाले हैं आँखों की गुस्ताखिया इस फिल्म से गाना। बहुत नया गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, विशाल मिश्रा की आवाज़ और उन्हीं का संगीत।

हिट एंड हॉट में जो आज का आखिरी गाना हम सुनने वाले हैं, प्रदीप अनंत कृष्ण तैयार रहना, क्योंकि वेदा फिल्म से गाना जो है खास आपके लिए सिर्फ

सिर्फ FM रेनबो पर। अब रोशनी का आज के लिए आपको गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। हिट एंड हॉट में नए गानों का मजा हम सभी ने मिलकर लिया। आप में से कई सारे लोगों के पसंद के गाने हमने प्ले किए, तो जितने भी सारे FM रेनबो के लिसनर्स फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को आज के लिए आखिरी बात बस यही कहूँगी कि गिले शिकवे दिल से न लगा लेना, गिले शिकवे दिल से न लगा लेना, कभी रूठ जाऊँ तो मना लेना। कल का क्या पता हम हो न हो, कल का क्या पता हम हो न हो, इसलिए जब भी मिलूं कुछ खिला लेना या फिर गले लगा लेना। अब देखो, आप सभी को मैं यहाँ FM रेनबो से जो है ऑनर जप्पी भेज रही हूँ, और लंच टाइम हो गया है तो आज के लिए मैं अपने आप को एक अच्छी खासी ट्रीट दूंगी। लेकिन बात पते की यही है कि गिले शिकवे मत रखना, दिल में जो प्यार है वो बरकरार रखना, और जो प्यार है रविवार का दिन है अपनों के साथ बांटना मत भूलना, और FM रेनबो वो पर हर दिन ट्यून इन करते रहो फॉर योर डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। रोशनी की तरफ से आज के लिए टाटा गुड बाय, कल हो ना हो लेकिन बहुत जल्द मैं आप सभी को फिर मिलने आऊंगी ओनली ऑन 107.1। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।

चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।

0: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है, ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
0: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
2: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि

0: में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं। रविवार की रंगीन शाम है, कुछ बातें होंगी दिल से दिल तक और कुछ गीत जो दिल को छू जाते हैं, जिन्हें सुनकर हम गुनगुनाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ गीत लव यू जिंदगी प्रोग्राम में लेकर आई हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार इस गीत के साथ।

0: हमने आज तक सुनी अपने दिल की, हमारे दिल ने आज तक की अपने दिल की। न ये दिल हमारी कुछ सुनता है और ना ही हम अपने दिल की कोई बात अनसुनी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम अपने दिल के हाथों बहुत ही मजबूर है। हम क्या हर कोई इस दिल की वजह से मजबूर है, उसके सामने बस हाँ जी करता रहता है। पर सच कहूँ, जब ये दिल अपनी मनमानी करता है ना, तो हम भी उस मनमानी को एंजॉय करते हैं। कैसे, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन इस गीत के बाद।
1: ये पर

हम बात कर रहे थे दिल की और दिल की इस मनमानी की। वैसे भी हम FM रेनबो चैनल पर दिल से दिल तक ही तो बातें करते हैं, तो जो बातें दिल की होती हैं और दिल तक पहुंचती हैं ऐसी बातें करते हैं हम, और जो दिल के बहुत करीब होते हैं गीत, वो गीत हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। और मज़े की बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि दिल मनमानी करता है, लेकिन फिर भी दिमाग नहीं मानता दिल की बात, और जब हम दिल की बात मानते हैं तो हम भी एंजॉय करते हैं, ये बात मैं कह रही थी। तो दोस्तों आप कहेंगे कि दिल अपनी मनमानी कैसे करता है, तो दोस्तों दिमाग कहता है कि बारिश में भीगना मना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिमाग कहता है कि भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ऑफिस नहीं जा सकते हैं, छुट्टियाँ हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, मॉनिटरी लॉस हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दिल कहता है कि बारिश का मज़ा लूटना है तो चल ज़रा भीगते हैं, थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हैं, थोड़ा ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं, ऑफिस की छुट्टियों को भूल जा, बॉस की किचकिच को भूल जा थोड़ी देर के लिए, ये ज़िंदगी तेरी है, थोड़ा अपने लिए जी। हमारे दिल की इस तरह की जो मनमानी होती है ना, वो हमारे दिल को भी अच्छी लगती है और हमें भी। दिमाग नहीं मानता, खैर वो उसकी सोच है, लेकिन हम जो है वो ये मनमानी बहुत इंजॉय करते हैं। ये मौसम जो है, ये प्रकृति जो है, ये ज़िंदगी जो है, वो बस हमें जीने के लिए कहती है। हम ही हैं जो जीना भूल गए हैं, बस रोज़ की रूटीन में फंसे हुए हैं, और जो ये एन्जॉयमेंट है ना, ये भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा एन्जॉय कीजिए, मौसम बदलते रहते हैं और ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वक्त अपने रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, थोड़ा ये ज़िंदगी जी कर देखिए ज़िंदा दिली से।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जी हाँ, मानना पड़ता है कभी कभी सभी का, दिल का भी, दिमाग का भी, और जो अपने होते हैं उनका भी, क्योंकि वो बड़े प्यार से हमें कहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी नसीहतें हमें देती रहते हैं। और बड़े बुजुर्ग तो हमसे जितना प्यार करते हैं तो उनकी नसीहतें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहुत काम की होती हैं। और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि जो बोएगा वहीं पाएगा, तेरा किया ले आएगा, सुख दुख हमारे कर्मों का फल है, इसलिए जैसे करेंगे हम वैसे ही भरेंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे। और कुछ आपको बोना है ना, तो ये मौसम सबसे बढ़िया है, यानी कि कर्म जो बोते हैं हम, वो तो दूसरी बहुत बड़ी बात है, वो जीवन का फलसफा है, लेकिन सिर्फ अगर हम कुछ बोने की बात करें तो ये जो मौसम है, बारिश का मौसम, ये सबसे बढ़िया होता है। और मैं बात कर रही हूँ पौधों की, पेड़ों की। हम इतने फल खाते हैं ना, मतलब समर वेकेशन में आम खाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर चीकू खा लिए, जामुन खा लिए, अमरूद खा लिए, तो उनके जो बीज है ना, वो इस मौसम में ज़मीन में, या फिर हम हमारे घर का जो बगीचा होता है उसमें अगर हम बो देते हैं, तो उसके फल जब आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा दामन उन फलों से भर जाएगा। और

जो हरित वसुंधरा का सपना है वो भी सच हो जाएगा। तो कर्मों का फल जो है वो हमें बहुत सारे जो है सालों के बाद मिलेगा, लेकिन इन फलों का जो आपने बीज बो दिया तो कुछ ही सालों में फल ज़रूर मिलेगा आपको।

अब देखिए ना, थोड़ा सा सोचिए ना, समझिए ना कि हर अच्छी बात की शुरुआत हमसे ही तो होनी चाहिए ना। इसके बजाय कि हम दूसरों को नसीहत देते फिरे कि पेड़ लगाओ, हमसे ही, हमारे घर से ही इसकी शुरुआत हो तो कितना अच्छा हो। अब देखिए, समर वेकेशन में हमारे घर पे बहुत फल खाए गए। अब मेरे घर की जो छोटा सा गार्डन है हमारी बालकनी में, वहाँ पे 14 आम के पेड़ यानी कि छोटे छोटे पौधे, 4 चीकू के पौधे, 7 जामुन के पौधे और 1 नारियल का पौधा पनप रहा है। हमारी छोटी सी मेहनत हमारी अगली पीढ़ियों के लिए फलों का उपहार लेके आएगी और मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए फलों का उपहार देने वाली हूँ। इसमें आप भी ज़रूर शामिल हो जाइए। छोटी सी कोशिश बहुत सारे फल लेकर आएगी हमारे भविष्य में, है ना। इसी प्यारे से जो है नोट के साथ दीजिए लव यू जिंदगी प्रोग्राम यहीं समाप्त करने की आकांक्षा को इजाजत, लेकिन सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल। सुनते हैं इस प्रोग्राम के यानी कि लव यू जिंदगी प्रोग्राम के 2 आखिरी नगमे और आपसे इजाजत लेती हूँ, लेकिन अंदाजे में आप प्रोग्राम में आपसे पुनः भेंट होगी ठीक 6:10 पर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: कहते हैं सिर्फ अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा, लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम अंदाजे बयां 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी मुंबई के एफ एम रेनबो चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। शाम के ठीक 6:16 हो रहे हैं और पेश है अंदाजे बयां प्रोग्राम की ये पहली गजल तलत अजीज की आवाज में।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका

सर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

मोहब्बत में सर में कोई सौदा होता ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि ये जो दर्द है ये वही समझता है जिसके दिल में ये दर्द होता है। तभी तो शायर कहता है, समझते क्या थे मगर सुनते थे फसानाए दर्द, समझते क्या थे मगर सुनते थे फसानाए दर्द, समझ में आने लगा जब तो फिर सुनाने गया। जाहिर सी बात है जब ये मोहब्बत का दर्द समझ में आता है तो फिर ये दास्तानें सुनी नहीं जाती, क्योंकि पता होता है हर दिल को कि सजा तो मिल रही है लेकिन ये नहीं पता होता कि खता क्या है।

बेगम अख्तर की गाई इस गज़ल के साथ ही अंदाजे व्या प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
1: We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पर बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज की आवश्यकता है उस चीज का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे एल्डरली थे उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें वो कहता है, नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं। तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं. आर्टिकल 41, स्टेट शैल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज. एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें. उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं. तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके. हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है. तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की. देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी. लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी. और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे. तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें. उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है. पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए.

0: इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है। पहले हम सीआरपीसी कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी, जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में है लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: You have been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning. We slip into a short break.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो ईजिली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं, हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स नहीं, बच्चे समझे वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी।

0: तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीजों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सके, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सके, उनको एजुकेट कर सके, तो वो चीज बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स है लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा, वो ये नहीं समझते परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी हैव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: You had been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा प्रसारित। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी में समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप सुनते हैं न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी। हम तुम प्रोग्राम जो आपकी फरमाइशों पर आधारित होता है वो शुरू हो चुका है 7:10 से। पहला गीत हमने आपको सुनवाया भी है मुकेश और लता जी की आवाज़ों में। और एक बात बता दूँ, आज थोड़ा सा जो है कम वक्त के लिए, यानी 7:30 तक ही होगा हम तुम प्रोग्राम, इसलिए जो फरमाइशें आई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। लेकिन आप सबके जो नाम है जिन्होंने हमें फरमाइश भेजी है वो मैं अभी आपको बता देना चाहती हूँ। पुणे से राकेश माथुर, मनोज सिन्हा जी अहमदाबाद से, पंकज मोहड़ अमरावती से, अरविंद कुलकर्णी इचलकरंजी से, फिरोज सिगनपुरिया मुंबई से, राजश्री और अशोक जोशी विक्रोली से, विजेंद्र घाटोल अकोला से, उषा और संजय पाटिल मलकापुर से, प्रदीप अनंत कृष्णन, प्राची शिंदे, संजय दर्शन, विनंती ठाकुर, आनंद मोकाशी अंधेरी से, डॉ

डॉक्टर अंजू जी, रजनीकांत पाटिल जी का वाडफंड से हमें फरमाइश मिली है, मैसेज आया है। दत्ता केदार जी का पंढरपुर से, अजय साखरे इंदौर से, केदार और सुमित यादव कुरला से, रश्मि और शार्दुल भारती डोंबिवली से, हितेंद्र दास आसाम से, दीपा पालकर और रेणु और सुशील यादव जी का उदयपुर से हमें मैसेज आया है। तो इन सब ने हमें फरमाइश भेजी है हम तुम प्रोग्राम के लिए, और फरमाइशें हम पूरी करते जा रहे हैं।

हम तुम प्रोग्राम का ये है आखिरी नगमा, और इस नगमे के साथ ही आपकी आरजे सखी आकांक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं। दोस्तों, कुछ ही पलों में सुनेंगे आप प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।

0: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी।
1: श्रोते हो, सादर करत आहोत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।

0: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं।

0: पे बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: श्रोते हो, आत्ताच आपण कार्यक्रम ऐकलात फार्म टू सिटी। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: पौधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है।
1: इस वर्ष ये अभियान

0: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to this call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

0: श्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास

0: के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPAC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3,00,000 people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
3: Jo khelega, wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai.
2: India finished at the fourth spot on the medals table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम है दिल से दिल, प्रोग्राम है रंगे महफिल, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, जो दिल के करीब होते हैं वही अक्सर समझ नहीं पाते कि वो कितने खास हैं। तो बस अपने दिल के करीब रखिए और समझ लीजिए कि हम आपके अपने हैं, अपने।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू और आकाशवाणी रेनबो पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपकी। वक्त कहता है ठहर जा, दिल कहता है चल पड़, और जिंदगी बस

मुझे आज भी फिर से महसूस हुई तेरी कमी शिद्दत से, मुझे आज भी फिर से महसूस हुई तेरी कमी शिद्दत से, आज फिर दिल को मनाने में बड़ी देर लगी। तो बिल्कुल इस कमी को दूर करना बहुत मुश्किल है, बस दिल ये समझ सकता है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, ये है आपका अपना अपना चैनल और आपके साथ मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव संजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। बिल्कुल रात के 11 बज के और 33 मिनट हो चुके हैं, 34वें मिनट की तरफ सुई लगातार बढ़ रही आगे, और बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया। मैं आपको बताऊं कि ये जो मैसेज अगला किया इसे किया अनु कुमार रावत जी ने, और आप हैं ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, वाओ अनदर मेलोडी, जिए तो जिए कैसे। बिल्कुल आपको सुनाएंगे हम, हैदराबाद से ये मैसेज उन्होंने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए। और अगला मैसेज हमारे पास किसने भेजा, अमित आंचल ने सासाराम बिहार से, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप हर याद को ताज़ा कर दिया आपने। और ये जो मैसेज मेरे पास आया जिसको लिखा कि आदाब संजीव जी, हम आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान साहब, फैजी, फराज, फरीन, फरान, फारे और ताहिरा। तो जी बिल्कुल आप हमें सुन रहे हैं, तो हम भी आपको ये प्रोग्राम सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो एक और बहुत प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए।

जी हाँ बिल्कुल, जब कभी सोचते हैं हम लता जी के बारे में तो यही बात आती है कि जब आंसू भर आते हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनका उनका वो शख्सियत, उनका वो विराट व्यक्तित्व आज भी हमारे हृदय में अंकित है, हम सब के अंदर हैं और यूं ही रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का प्रोग्राम रागे महफिल से, मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी ऊपर वाले ने चाहा तो, लेकिन एक और प्यारी गज़ल लता मंगेशकर जी की आवाज़ में मैं आपको सुनाकर तब आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।

बेहद खूबसूरत शो के साथ संजीव भाई आपको आज के लिए शुभ रात्रि कहेंगे और अपने सभी दोस्तों को कहेंगे हम आभार आपका, स्वागत आपका, क्योंकि दिन का कैलेंडर बदल चुका है। अब एक नए दिन में हम दाखिल हो गए और नए दिन के पहले शो से पहले मुख्य समाचार इस घंटे के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह भी किया। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित किए गए हैं। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक हासिल किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 12:02 हो चुके हैं, कुछ ही समय में फिर हाजिर होते हैं एक खूबसूरत शो लेकर जिसका नाम है जीरो आवर शो, मेरे यानी रजत के साथ। स्वागत एक बार फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का और दोस्तों का।

0: आप एक स्टूडियो की बात अगर माने तो, और ये वक्त हो चला है एक बार फिर से आप सभी का इस शो में स्वागत करने का, शुभकामनाएं देने का कि आपका दिन आगे इसी तरह का आगाज, इससे भी बेहतर शुरुआत लेकर आए, और इस शुरुआत को और बेहतर करने जा रहे हैं हम। कल सुबह कीजिएगा आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने वर्क स्टेशन पर, जो भी आप करते हैं। फिलहाल आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 और इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

उनका करार है ही खोने के लिए। अक्सर लोगों को इससे जुदा होते हुए, इसे खोते हुए ही देखा सुना है हमने। और कुछ ख़ास किस्म की जो बंदिश होती है वो करार के होने और खोने के बीच की, वो हमें तरह तरह की यादें और बहुत तरह के अनुभव दे जाते हैं। उन्हीं यादों और अनुभवों का पिटारा आपको रखना है अपने पास, और हम जो करने जा रहे हैं वो उसी पिटारे में से उठा उठा कर वापस आपको देने वाले हैं। आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। खूबसूरत गानों की जुम्बिश के साथ, एक शानदार कलेक्शन के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए, आपके यादों के लिए, और उस खास बात के लिए, उस खुसूसियत के लिए जो आपके हमारे हम सब के जिंदगियों से या तो जुड़ी हुई हैं या कभी जुड़ी रही। और इसी बंदिश और जुम्बिश के साथ शुरू कर चुके हैं हम ये काफिला, जिसे हम कहते हैं जीरो आवर शो। क्योंकि भाई अब कुछ देर पहले जब हम आपके साथ आ रहे थे समाचार पढ़ने, तब ये 00:00 का कॉम्बिनेशन था यहाँ, अब ये 00:00 और 09:00 हो चुका है, यानी 12:09 हो चुके हैं घड़ी की सुई के मुताबिक।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
5: ठीक है।
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930

0: पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

ये था प्रोग्राम जीरो और शो मेरे यानी रजत के साथ। कुछ ही देर में आप होंगे मुताबिक मुखातिब नए शो के साथ, जो कि होगा सुहानी रात थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले इस घंटे की प्रमुख न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह भी किया। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान

शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन किया है। थोड़ी देर में होंगे आपके साथ लेकर सुहानी रात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे।

0: साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सगरे गाँव की गोरिया कुछ कुछ मैं छोड़ रहा।

इसीलिए तो कहता हूं यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

सुबह के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल के खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया। इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश कियान ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका से फिलहाल किसी बातचीत से इनकार किया। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। ये थी प्रमुख न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अब समय हो चला है हमारे नियमित कार्यक्रम भुलाए ना बने का, तो बस इंतजार खत्म और कुछ ही देर में हाजिर होते हैं ये खूबसूरत नगमों से सजा प्रोग्राम खास तौर से आपके लिए लेकर। मैं हूं रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं।

0: हमारी बेकरारी का क्या है जनाब, हम अक्सर आपको बता भी देते हैं और कई बार नहीं भी बताई जाती कि किस कदर रुसवा हो जाते हैं वो लम्हे जब आपसे मुलाकात नहीं होती। इतने खूबसूरत गीतों के मार्फत, इतने शानदार मौसम के कंधों पर सवार होकर जब हम ये प्रोग्राम करने आए हैं आपके साथ, तो एक अलग ही तरह का घुमा है, एक अलग ही तरह का कह सकते हैं कि सुरूर है, खुमारी है कि बस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े जाएं, मदमस्त कर देने वाले गानों का, पुराने गानों का, नए गानों का संगम लेकर आपके साथ आया जाए, आपके साथ उस तासुरात को बांटा जाए जो अब से कुछ समय पहले तक इस तरह का कहना चाहिए कि अंदाज़ देकर गया है हमें कि आज भी वो हमसे भुलाए नहीं भूलता। कितनी भी कोशिश कर लें हमारे जहन से उन खूबसूरत गानों की जो यादगार है वो जाती ही नहीं, जो एक बार कानों में पड़ने के लिए बेताब रहते थे और हम उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते थे। उस समय को, उस दौर को याद करने का ये खूबसूरत लम्हा मिलता है, ख़ासतौर से तब जब आकाश को बादलों ने घेर रखा हो, चांद सितारे कोशिश करते हों बादलों के भीतर से झांकने की, कहीं बारिश है तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ मौसम खुशनुमा है, जहाँ बारिश नहीं भी है वहाँ भी खुशनुमा मौसम है, लेकिन थोड़ी सी उमस की जो छटाएँ हैं वो दोबारा से आ गई हैं दिल्ली NCR की अगर बात करें। लेकिन कोशिश यही है कि ये लू में या तेज़ गर्मी में तब्दील नहीं होंगी, इस तरह का जो प्रयास है वो मौसम की तरफ से हो रहा है। खैर, हम आते हैं दोबारा अपने स्टूडियो में वापस मौसम से और करते हैं आपका स्वागत प्रोग्राम भुलाए ना बने में, क्योंकि वक्त हो चला है 2:11 होने को है और आज सोमवार की शुरुआत हम कर चुके हैं। करीब तीसरा शो है ये इस दिन का, आज का, और आप जुड़े हैं हमारे साथ बहुत दूर दूर से भी, काफ़ी नज़दीक से भी। आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत एहतराम, तहे दिल आपका स्वागत, अभिनंदन, और जुड़े रहें इस ख्वाहिश के साथ। रजत शर्मा है आपके साथ इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है भुलाए ना बने।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर

0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये था प्रोग्राम भुलाए ना बने मेरे यानी रजत के साथ। अब वक्त हो चला है एक और पन्ना पलटने का कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन उससे पहले इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील भी की। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस बीच इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका से फिलहाल किसी बातचीत से इनकार किया। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। ये थे मुख्य समाचार अब तक के आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के 3:02 हुए हैं, मध्य रात्रि के कहना चाहिए। कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारी नियमित प्रस्तुति।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल

0: SMS, fraud link, lottery में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए।

नमस्कार, सुबह के 4 बज चुके हैं और समय हो चला है प्रोग्राम सारे गामा का, लेकिन कुछ देर के लिए ठहरते हैं और ज़रा जानते हैं देश और दुनिया की हलचल इस घंटे की न्यूज़ हेडलाइन पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास आज से 14 अगस्त तक कोच्ची में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 4:02 हो चुके हैं। कुछ ही देर में जुड़ेंगे कार्यक्रम सारे गामा से और ये प्रोग्राम लेकर आया हूं मैं रजत इस आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी देश और दुनिया से जुड़े रहिए और ट्यून इन करिए हमारा शो जो कि अब होने वाला शुरू सारेगामा इसी फ्रीक्वेंसी पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है

एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।